और आप जो हैं, हम बहुत ज्यादा अवेयर हो रहे हैं अपनी हेल्थ को लेके, बहुत कॉन्शियस हो गए हैं कि हम कुछ उल्टा सीधा ना खाएं, कुछ ऐसा ना खाएं जो हमारी हेल्थ को खराब करे, हम कैलोरीज इकट्ठी करें अपनी बॉडी में, या फिर हमारे शरीर को कुछ प्रॉब्लम हो, हम बहुत ज्यादा जो है इस बात को लेकर कॉन्शियस हो चुके हैं, अवेयर हो चुके हैं। लेकिन फिर भी एक बात को लेकर कॉन्शियस होने की, अवेयर होने की अभी भी जरूरत है, आपकी मेंटल हेल्थ। जी हाँ, आप मेंटल हेल्थ को अक्सर अवॉइड कर देते हैं, आप अक्सर बहुत सारी चिट चैट अपने दिमाग में भर के रखते हैं लोगों के थ्रू, आप बहुत सारी गॉसिप में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसके जरिए आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है। अब आप कहेंगे मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है तो होती रहे, फिजिकल हेल्थ तो हमारी परफेक्ट है भाई, हम उसके लिए तो कॉन्शियस हैं। देखिए, मेंटल हेल्थ अगर इफेक्ट करेगी तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी इफेक्ट करती है। जी हाँ, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके मेंटल हेल्थ से शुरू होकर ही आपके फिजिकल हेल्थ पर आती हैं, जैसे कि आपका मोटापा। मोटापे का एक बहुत बड़ा रीजन है स्ट्रेस होना, फियर होना, और ये सब चीजें जो हैं, ये जितना आप सोशलाइज होते हैं ये उतनी ही इकट्ठा होती हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, न सिर्फ अपनी फिजिकल हेल्थ पे, अपनी मेंटल हेल्थ पे भी। ये स्ट्रेस जो है, मुझे लगता है ये आता ही तब है जब आप ज्यादा सोशलाइज होते हैं, ज्यादा गॉसिप में पड़ते हैं, इधर उधर की बातें आपके कान में पड़ती हैं, वरना हमारी लाइफ में इतनी भी प्रॉब्लम नहीं है कि हम 24 घंटे स्ट्रेस में रहें, है ना। तो ध्यान दीजिए जरा मेंटल हेल्थ पे, ऐसा ना हो कि फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करते करते मेंटल हेल्थ पूरी तरह से डिसबैलेंस हो जाए। सुनते रहिए मेरे साथ, इट हैपेंस सिर्फ और सिर्फ रेडियो प्रसारणी पर।

0: नशे से चढ़ गई।
1: रेडियो ब्रिजवाणी 1701 AM पर दोस्तों आप मेरे यानी सताक्षी के साथ हैं और मेरे साथ सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। यू नो व्हाट दोस्तों, कभी कभी हमें लगता है कि हर कोई जिंदगी में हर कोई हमारी साइड है। कुछ भी हो जाए, जिंदगी की कैसी भी सिचुएशन आए, ये बंदा जो है ये हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, हमेशा हमारा हाथ थाम के रखेगा। बट सडनली सिचुएशन जब हमारी लाइफ की चेंज होती है ना, हमारा अच्छा वक्त जब बुरे वक्त में तब्दील होता है या टफ टाइम जिंदगी का आता है, तो उसी सडन सिचुएशन के हमारी लाइफ में बदलने के साथ कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जिन पर आपको बहुत भरोसा होता है कि वो ये भरोसा आपका कभी नहीं तोड़ेंगे, वो भी सडनली चेंज हो जाते हैं और उस वक्त आप जिंदगी के भंवर में खुद को अकेले खड़ा हुआ पाते हैं। इसलिए हमेशा से ही खुद को तैयार रखिए कि लाइफ की जो भी सिचुएशन आए आप उसे अकेले फेस कर सकें, क्योंकि जब कभी जिंदगी में अकेले लड़ना पड़ता है ना सिचुएशंस के साथ में, तो बहुत तकलीफ होती है अगर आप किसी से एक्सपेक्टेशन रखते हैं या किसी पर भरोसा करते हैं। तो खुद को तैयार जरूर रखिए हर सिचुएशन के लिए, अकेले उसका सामना करने के लिए, अकेले लड़ने के लिए। सताक्षी के साथ इट हैपेंस सिर्फ और सिर्फ रेडियो ब्रिजवाणी 1701 AM पर। आइए अभी सुनवाती हूँ आपको ये अगला ट्रैक।

अच्छा दोस्तों, हमारी जिंदगी में ना दो तरह के लोग होते हैं, या दो तरह के दोस्त कह सकते हैं होते हैं। एक वो जब आप थोड़ा सा उदास हो या परेशान हो या उस मूड में, उस जोनर में ना हो जिस पर आप नॉर्मली रहते हैं। एक बात करने का स्टाइल आपका होता है, लोगों की तरफ देखने का स्टाइल होता है, लोगों के साथ मिक्सअप होने का रोज़ का स्टाइल होता है। और कभी कभी वो स्टाइल जब आप डाउन होते हैं ना, जब आप परेशान होते हैं, जब आपकी ज़िंदगी में कुछ मुश्किल होती है, तो वो स्टाइल चेंज होता है। आप बात नहीं करते लोगों से, आप चुप रहते हैं, आप शांत रहते हैं, है ना। ये हर इंसान की एक अलग सिचुएशन होती है, अपनी टफ सिचुएशन को डील करने के लिए हर किसी का एक अलग स्टाइल है। अब बात की मैंने उन दो लोगों की जो हमारी ज़िंदगी में होते हैं। ये दो लोग वो लोग होते हैं जब आपका ये जो स्टाइल चेंज होता है ना नेगेटिव सिचुएशंस में या टफ सिचुएशन में, इनमें से एक बंदा जो है वो आपसे कहेगा कि यार बात करो, बात नहीं करो। आप कहेंगे नहीं मेरा मूड नहीं है, वो कहेगा कि इट्स ओके, योर चॉइस, राइट। होते हैं ना कुछ दोस्त हमारे ऐसे। लेकिन एक बंदा जो है, एक दोस्त हमारा जो है, वो हमारे पीछे पड़ जाता है, क्यों बात नहीं करनी, क्या हो गया है, मुझे बताओ, मैं कुछ मदद करूँ, ऐसे ही घुटते रहोगे, इस तरह की बहुत सारी बातें वो हमसे करता है। और जब तक हम बोल नहीं देते, हम परेशान नहीं हो जाते, हम इरिटेट नहीं हो जाते ना, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। हमें ज़िंदगी में ये दूसरे वाले जो लोग हैं ना, जो हमें इरिटेट करते हैं, हमारे दोस्त, उनके साथ रहना है। हमें उनके साथ नहीं रहना जो हमारी हर चॉइस हम पर छोड़ दें। कभी कभी ना ज़िंदगी में ये मन करता है कि कोई हो जो हमें कुरेदे, कोई हो जो हमें इरिटेट करे, हमसे बुलवाए, है ना। हम चाहते हैं, हम ऊपर से दिखाते नहीं, लेकिन हम चाहते हैं। और इसीलिए दोस्तों, ज़िंदगी में ऐसे दोस्त होने जो आपके पीछे पड़ जाए ना, बहुत ज़रूरी होते हैं। आपकी ज़िंदगी में अगर ऐसे दोस्त हैं तो हमें बताइए, हमें रेडियो पिस्वानी के हमारे फेसबुक पेज पर बताइए। और मैं आपके और मेरे ऐसे दोस्तों के नाम प्ले करती हूँ ये अगला ट्रैक। स्टे ट्यून्ड रेडियो पिस्वानी, मेरे साथ सुनते रहिए आपका अपना ब्रेकफास्ट शो, इट हैपेंस।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बियां बोतलां तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनु असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उहनां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाउणा शुरू करो।

ट्रैक के बाद एक बार फिर से सताक्षी कहती है आपको गुड मॉर्निंग। रीच प्रिस्वानी पर दोस्तों आप हैं मेरे साथ, मेरे यानी सताक्षी के साथ, और मेरे साथ सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। हर रोज शुरुआत होती है अपने सपनों के पीछे भागने की, है ना। हर रोज हम उठते हैं अपने ढेर सारे सपनों को संजोए हुए या जो पुराने सपने हैं उनको पूरा करने की एक नई उम्मीद को लिए हुए। और सही भी है, अगर आज हम अपने सपनों के पीछे नहीं भागेंगे तो कल हमें हमारी जरूरतों के पीछे भागना पड़ेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आज सपनों के पीछे भागा जाए, क्योंकि जरूरतें आपकी उम्र कब खत्म कर देती हैं आपको पता नहीं चलता है। कम से कम जरूरत भर का या जरूरतों को पूरा करने भर का इंसान जो है वो तो हमें बनना पड़ेगा, है ना। इसलिए सपनों के पीछे आज भाग लीजिए ताकि कल अपनी जरूरतों को आप पूरा कर पाए। सुनते रहिए सताक्षी के साथ इट हैपेंस, रेडियो प्रिस्वानी 107.0 AM। और उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस बात ने आपका आलस भगा दिया होगा। तो आपकी इस पॉजिटिव एनर्जी के नाम ही है ये अगला ट्रैक। Keep listening to Radio Prasmani.

गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। दोस्तों, सुबह की ताजा तरीन शुरुआत जो है वो तो चाय के साथ ही होनी चाहिए, है ना। और कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि कोई हमसे कहता है चाय पियोगे, हम कहते हैं नहीं यार, मन नहीं है, अभी तो पिए। देखिए, मुझे लगता है कि चाय के लिए कभी भी ना नहीं कहना चाहिए, क्योंकि चाय के साथ जब आप एक इंसान के साथ बैठते हैं, उसके साथ चाय पीते हैं, तो चाय पर आप सिर्फ अपना वक्त नहीं बांटते हैं, चाय के साथ आप अपने दिल का बोझ, आपके मन की परेशानियां, आपका दुख और आपकी खुशियां, आप सब कुछ शेयर करते हैं, है ना। तो अगली बार अगर कोई आपको चाय ऑफर करे ना, तो ना नहीं कहिए। क्या पता कोई खुद को आपके साथ बांटना चाहता हो, और खासकर घर पर, है ना। घर पर जब आप चाय पीते हैं ना, तो कितनी सारी बातें चलती हैं, कितनी सारी गपशप चलती है, कई पुराने किस्से भी चल पड़ते हैं, दिल खुश हो जाता है बीती यादों को याद करके। सो इतना खूबसूरत वक्त होता है चाय का वक्त, इसे ज़ाया नहीं करना चाहिए और ना ही इससे मुकरना चाहिए। तो यार, जब भी कोई पूछे चाय पियोगे, तो अगर फ्री हैं तो बोल दीजिए हाँ पियेंगे, नहीं फ्री हैं तो थोड़ा वक्त निकाल के बैठ जाइए दो पल उसके साथ। तो बताइए, चाय पियेंगे? मैं पूछ रही हूँ इसलिए क्योंकि आप मुझे बुलाएंगे ना अपने घर। हाँ, अब स्टूडियो में तो पॉसिबल नहीं है, तो आप मुझे बुलाइए अपने घर, चाय पर बैठते हैं, गपशप करते हैं, ढेर सारी बातें हैं जो स्टूडियो के अलावा भी आपसे बांटी जाएंगी। फिलहाल आपकी चाय के नाम, आपके अपनों के नाम, ये अगला ट्रैक। स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रसानी, मेरे साथ गर्मा गर्म चाय के सिप के साथ सुनते रहिए आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव के सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।

रेडियो प्रस्थानी 1701 AM सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। बहुत सारी बातें की आज हमने और बहुत सारी बातें हम अभी भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। वैसे अभी बात करूंगी आपसे एडजस्टमेंट और अंडरस्टैंडिंग पर। कई बार हम कहते हैं कि लाइफ में एडजस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। कहीं कहीं आप एडजस्ट करते हैं ना तो आपके रिश्ते स्ट्रांग हो जाते हैं, लेकिन उस एडजस्टमेंट से भी ज़्यादा दोस्तों अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है ना। आप सिर्फ अगर एडजस्ट करते जा रहे हैं और ना आप सामने वाले को समझ रहे हैं ना सामने वाला आपको समझ रहा है, तो वो रिश्ता कभी भी सही ट्रैक पर नहीं चलेगा, क्योंकि आप सिर्फ एडजस्ट ही करते रहेंगे। हो सकता है कि वो इंसान इतना बुरा है जो आपसे सारी जिंदगी एडजस्ट करवाए, वो आपको फॉर ग्रांटेड ले, आपको जिंदगी में हर्ट करे, ऐसा हो सकता है ना। इसलिए एक बंदे के साथ जब भी आप रिलेशनशिप में हैं या रिलेशन है किसी के साथ या कोई रिश्ता है किसी के साथ, तो जितना एडजस्टमेंट इम्पॉर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा अंडरस्टैंड करना इम्पॉर्टेंट है उस सिचुएशन को, उस बंदे को, और सबसे इम्पॉर्टेंट खुद को। आप क्या चाहते हैं? आप कई बार ही रिश्ते से निकलना चाहते हैं लेकिन आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे होते हैं, आप सिर्फ एडजस्ट करते जाते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग और एडजस्टमेंट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, इनका मिक्सअप जब होता है ना, तब लाइफ ब्यूटीफुल होती है, वो रिश्ता ब्यूटीफुल होता है। तो एडजस्ट कीजिए, लेकिन वहाँ कीजिए जहाँ करना सही है, राइट? और सुनते रहिए सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्थानी 1701 AM पर आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। खासकर उनके लिए है गाना जो लोगों को पहचानते हैं। कीप लिसनिंग टू रेडियो प्रस्थानी।

ये था आज का हमारा ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। बहुत सारी बातें आज हमने की, बहुत सारे किस्से यहाँ पर डिस्कस किए एंड आई होप कि आज के किस्सों आज की बातों को आपने एंजॉय किया होगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं अभी जो आपके साथ बांटनी है, आपके साथ करनी है, लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज की एक सीमा होती है और अभी अगर हमने और बातें की तो वो सीमा हम लांग जाएंगे, मतलब हम उसके बियॉन्ड चले जाएंगे। ऐसा तो हम नहीं करेंगे ना, क्योंकि आज करेंगे तो फिर कल मिलेंगे नहीं, स्टेशन हमसे कहेगा कि भाई तुम लोग को कोई ज़रूरत नहीं है प्रोग्राम करने की, तो ऐसा तो नहीं चाहते ना, हम तो रोज़ मिलना चाहते हैं। इसलिए आज के प्रोग्राम को हम यहीं पर करते हैं वाइंड अप। इस वादे के साथ जा रही हूँ कि कल टाइम पर फिर से आपसे मुलाकात होगी आपके अपने इट हैपेंस के सफर में, और जब तक मैं आपसे मिलती हूँ तब तक यूं ही हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप बात रहिए। हैव अ ग्रेट डे।

गोल भी होगा, ग्रुप भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूबॉल 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मॉर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फीजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फीजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisbane.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

हां जी, तो एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे थे रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 101.1 एम ते चार छे संदेश अलग दिन से बने हुए। अगली जेड़ी में फिल्म की गल कर जा रही है कि हां पर वो डिजास्टर नहीं है कि है, वो है जी बहुत ज्यादा शानदार फिल्म। फिल्म का नाम है जी लापता लेडीज, या लापता लेडीज है ना जो किरण राव वालों निर्देशित है। किरण राव आमिर खान की एक्स वाइफ 2024 कॉमेडी ड्रामा फिल्म आई सी। फिल्म का निर्माण राव आमिर खान जो ज्योति देशपांडे ने किया है। इस विच नितांशी गोयल प्रतिभा रांता स्पर्श श्रीवास्तव छाया कदम ते रवि किशन लीड रोल। फिल्म ना रविंद्रनाथ ठाकुर दे 1906 दे नॉवल नौकादुबी ते आधारित है। दिलीप कुमार दी मिलन 1946 घूंघट 1960 इसे आधारित हैगी। ये फिल्म हैगी जिहड़ी बहुत ही ज्यादा सराही गई हैगी है। फूल कुमारी ताज भी सब नूं याद है। तो आमिर खान प्रोडक्शन की यह फिल्म हैगी है जिहड़ी, इसकी असीं जरूर तारीफ करांगे। बाकी थोड़ा की कहना तुसीं दसो।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी
7: से। टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
2: से। आप सुन रहे हैं Radio Brisbane।
3: Hi, this is Salman Khan. आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
4: Hi, this is Deepika Padukone और सुन रहे हैं Radio Brisbane.
5: To every tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
7: से। To everyone tuning Radio Brisbane, this is Salman Khan.
8: Hi, this is Ajay Kumar और आप रहे हैं Brisbane.
9: राहुल, तेरे केस का
10: यार, I'm sorry, I want an expert to handle matters.
9: मेरी एडवाइस फॉर द बेस्ट, अतुल भावाज जी है ना, उनके पास 12 साल का एक्सपीरियंस है कि एंट्री केस को हैंडल करने में उन एक्सपर्ट ही है। क्रिमिनल डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ऑफेंस में 12 साल ज्यादा का एक्सपीरियंस और फैमिली इमिग्रेशन लॉज में भी आज एसोसिएट के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस यू गो थ्रू एंड वो इफेक्टिवली मिनिमाइज इट।
10: सो रिलैक्स्ड,
9: don't risk your life to Atul before you talk to police. Contact Atul on 00234 35 is 00234 235.

0: कंटेनर चेंज के मन से अपने खाली डिब्बों से धनराशि कमाएं। आपके प्रयोग खाली कैन और कार्टन 10 रिफंड प्राप्त है। इस बिनकॉइन कहते हैं। बिनकॉइन बचत करके खर्च कर जिस उद्यम में आप विश्वास है उसमें दान। आपके नजदीक कहीं कंटेनर चेंज मौजूद है बैंक न कि कूड़ेदान में। आप अपने नजदीकी फंड पॉइंट के लिए साइट पर जाएं और आप ही 10 माना शुरू
1: कंटेनर्स पहुंचाएं। आप खाली डब्बिया तो कमा लो तो हर एक खाली कैन के कारण ते रिफंड प्राप्त होता है। इस नु असी कॉइन कहते हैं। अपने कॉइन नु बचा खो या फिर जिस संस्था विषय विच तुहाडा है दान विच दो। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰਸ ਫੌਜ ਹੈ ਆਓ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਦੀ ਕੀ ਰਿਫੰਡ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ
2: ਸਮ ਨੰਬਰ ਵੇਟ ਵਾਟ ਯੂ ਸੇ Q170 ਦ ਮਸਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੈਦਿਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਅ ਹਸ਼ ਕੁਇਨ ਸਲਟ ਫਰਸਟ ਇਨ 1922 ਪੀਸ ਆਫ ਸਲਨ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿਦ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੋਵੈਨੈਂਸ ਓਨ ਆਊਟਰਾਈਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫਾਰ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ ਦ ਨੰਬਰ ਕੈਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੂ ਯੂ ਆਰ ਕਿਊ ਪੇਸ ਇਨਕੁਆਇਰ qplates.com.a ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਨੰਬਰ ਮੈਂਟ
3: और साग कुछ दम ये बिल्कुल नहीं आया
4: घराना असली देसी में साकर खिलाऊंगा
3: कहाँ और आकर असली देसी मिल्क कहाँ है
4: इस दुनिया में होती कोई फूड से फुल रिफाइंड घी मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में है 100% पीवर क्रीम है 99% युवा मिल्क फैट है और तो और हर मतलब रहने के बाद आई को पैकेजिंग में भी है
3: ये तो पार्टी था आई बताओ मैं खरीद सकता हूँ
4: लगभग सब आउटलेट पीवा दे ले सकते
5: पीवा दे सिंह डे और मैन्युफैक्चर किया जाता है बिल्कुल और कलर है और इन्फो आज ही कॉल मोबाइल 0400643545 याद रहे 0400643545 पर या फिर करें cd@gmail.com पर
6: इतनी सभी ट्राई करती है और जब रोटी वाली इस्तेमाल की है घर में घी क्यों फैल जाती है।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखें। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

फ्लोर भी होगा, ग्रुप भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूबॉल 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मॉर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर कटेशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फीजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फीजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisbane.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।

गोल भी होगा, ग्रुप भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूबॉल 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मोर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर कटेशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फीजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फीजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisbane.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।

स्कोर भी होगा, ग्रुप भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूबॉल 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मॉर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर कटेशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फीजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फीजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो briswani.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।

गोल भी होगा, ग्रुप भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूबॉल 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मॉर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.

गोल भी होगा, ग्रुप भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूबॉल 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मॉर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फीजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फीजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisbane.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।

गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूब ऑफ 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मोर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई, खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फीजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फीजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisbane.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
2: अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? रेडियो ब्रिस्वानी को साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अब सुनिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM कहीं भी कभी भी। डाउनलोड करें रेडियो ब्रिस्वानी का मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर से और रही कनेक्टेड अपने फेवरेट शोज से।
3: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उहनां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाउणा शुरू करो।
4: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
5: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
4: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
5: At Shop 9B, Sunnybank Hills Shopping Town, corner of Kurlam and 661 Crompton Road, Sunnybank Hills, Queensland 4109. For all your jewelry needs, contact 3273-7365. That's 3273-7365. Or email princejewelers@bigpond.com. Family business built on trust.

गोल भी होगा, ग्रुप भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूब ऑफ 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मॉर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फीजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फीजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisbane.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।

हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव की सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।

गोल भी होगा, ग्रुप भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूब ऑफ 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मोर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फीजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फीजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisbane.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।

भी होगा, ग्रुप भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूबॉल 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मोर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisbane.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूब ऑफ 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मॉर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर कटेशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फीजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फीजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisbane.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।

भी होगा, ग्रुप भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूबॉल 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मॉर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisbane.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
3: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
2: अच्छा, वो क्या?
3: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
2: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
3: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
4: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com पर। For best service, complete legal paperwork, merit certificate and a memorable merit ceremony. Remember the name, Parmanand, your professional and friendly civil merit celebrant since 2003.

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: Hi, this is Amitabh Bachchan.
3: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi guys, I'm Madhvi from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi, this is Salman Khan.
6: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
9: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
10: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
11: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी advice है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks Atanya, I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया.
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें.
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं. ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से. और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं.
2: मुझे तो पता ही नहीं था. अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो.
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस. और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर. याद रहे 0400-644-35 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर.
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है.

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

गोल भी होगा, ग्रुप भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूब ऑफ 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मॉर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर कटेशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फीजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फीजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisbane.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आर्श निविया के साथ। दोस्तों थर्सडे का है दिन और आप सब कैसे हो, कैसा फील कर रहे हो। अच्छा फील कर रहे हो, अमेजिंग फील कर रहे हो या थोड़ा ठीक ठीक फील कर रहे हो, जरूर बताइएगा। क्योंकि अब अगर आप ठीक ठीक फील कर रहे होगे तो अब आप बहुत अच्छा फील करने वाले हो, क्योंकि आपकी आर्श निविया आ गई है इस प्रोग्राम के साथ, आ गई है जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा दमदार है, बहुत ही ज्यादा वाइबी है। अब प्रोग्राम का नाम ही इवनिंग वाइब है तो आप खुद ही सोच लीजिए कि वाइब कैसे सेट नहीं होगी। जी हाँ, सो ये प्रोग्राम लेकर तो मैं आ गई हूँ। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोग तैयार हो या नहीं, क्योंकि अगर आप लोग नहीं तैयार हो तो जल्दी से हो जाइए, क्योंकि बढ़िया बढ़िया गाने होंगे तो आपका डांस करने का मन करेगा, आपका वाइब करने का मन करेगा। सो अगर आप ड्राइव कर रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें आप डांस नहीं कर सकते तो मत कीजिएगा, लेकिन अगर उसके अलावा कुछ भी आप ऐसा कर रहे हो जहां पर डांस किया जा सकता है तो कर डालिएगा, क्योंकि मजेदार गाना मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूं। लेकिन उससे पहले प्रोग्राम की शुरुआत होगी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के साथ, और वो है हेल्दी रिचुअल। हेल्दी रिचुअल ऐसा जो आपको अच्छे से काम बनाता है, फोकस्ड बनाता है और आपके मेंटल प्रेशर को कम करता है और आपके जो बाहर का दुनिया का शोर है ना उसको भी कम करता है। जी हाँ, सो आइए क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और इसी के साथ करते हैं शुरुआत आज के प्रोग्राम के पहले गाने के साथ, क्योंकि वो लिटरली आपको डांस करवाने वाला है। जब मैंने कहा था ना कि अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जहां पर डांस किया जा सकता है तो कर डालिएगा, क्योंकि गाने का नाम ही है मैंने तो तेरे नाल नचना, मतलब मैं तो तेरे साथ नाचूंगी। जी हाँ, यहाँ पर इसी गाने के साथ करते हैं शुरुआत और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें।

जी दोस्तों, इसी के साथ प्रोग्राम की हो गई है शुरुआत। तो जरा चले सीधा मौसम की ओर। जी हाँ, मौसम की ओर जाना जरूरी है क्योंकि मौसम कह रहा है मैं तो बरसूंगा, जम के बरसूंगा, भर भर के बरसूंगा। जी हाँ, सब बारिश है 90% चांसेस मैंने पहले ही कह दिया था। लेकिन सबसे पहले टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस तक देखा गया, लेकिन अभी की बात की जाए तो 18.1 डिग्री सेल्सियस के करीब है और 20.1 आपको फील हो रहा है। 16 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आप रात में टेम्परेचर में देख पाएंगे और उसके अलावा एयर क्वालिटी फेयर नहीं है बल्कि एक्सीलेंट है। आप सोचिए, इतनी भर भर के बारिश हो रही है, एक्सीलेंट तो होगी, है ना। एयर क्वालिटी मतलब एकदम मजेदार हो जाती है। बारिश ना पॉल्यूशन का नामो निशान मिटा देती है, जो थोड़ा सा भी होता है। जी हाँ, सो उसी के साथ ये तो है आज का हाल। और अगर बात की जाए कल की हाल की, तो कल भी 80% चांसेस है बारिश होने के। 1 mm तक बारिश हो सकती है, लेकिन बारिश होगी जितना मैं देख पा रही हूँ। सैटरडे को भी जो है वो पॉसिबली बारिश हो सकती है, 70% चांसेस है। और उसके बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे, ओ माय गॉड, मैं सिर्फ बारिश बारिश और बारिश ही देख पा रही हूँ। सो अगर आप में से कुछ ऐसे लिसनर्स भी हैं जिनको बारिश नहीं पसंद है, जैसे कि मैं भी काफी लोगों को जानती हूँ जिनको बारिश नहीं पसंद है, उनको वो भीगी भीगी सी गीली गीली सी फीलिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। सो अगेन आपको थोड़ा सा रेडी रहना होगा और आपको वो सारी चीजें अपने साथ रखनी है। लाइक बिना छाते के घर से बाहर निकलने की कोशिश भी मत कीजिएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहां पर थोड़ी कम हो रही है, यहां पर नहीं हो रही है, दूसरी जगह पर नहीं होगी, होगी, डेफिनेटली होगी। ट्रैफिक भी बढ़ सकता है, तो उसके हिसाब से जो है वो देख के जाइएगा, क्योंकि बारिश होती है तो अपने साथ ट्रैफिक को बुलावा देती है, लेकिन बारिश होती है तो अपने साथ बहुत ही खूबसूरत नींद लाती है। जी हाँ, जैसे कि अभी कल ही की बात है, मेरे लिसनर के साथ मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि मैं सोया और वहां पर बारिश की आवाज आने लगी, तो मैंने डेफिनेटली ये सोचा और मैंने कहा कि बारिश का जो म्यूजिक है ना, वो लिटरली लोगों को इंसोमनिया से भी दूर रखता है। मतलब बारिश के म्यूजिक में ऐसा कहा जाता है कि बहुत ही अच्छी नींद आती है। सो इन केस आप थोड़ा सा भी इंसोमनिया फील करते हैं तो बारिश में सोकर देखिए, बारिश की आवाज में सोकर देखिए और फिर देखिए आपको कैसा अच्छा फील होता है। और अगर आपके लिए वो काम करता है तो फिर आप उस म्यूजिक को प्ले भी कर सकते हैं जब आप सोते हैं। जी हाँ, जब बारिश गिरती है उसके गिरने की आवाज सच में बहुत ही अच्छे से हमारे दिमाग को, हमारे माइंड को सूद करती है, काम करती है। सो या बारिश बहुत अच्छी है और बारिश के साथ पकौड़े मुझे याद आ गए हैं। सो आप में से कौन मुझे पकौड़े भिजवा रहा है जल्दी सोच लीजिए और जब सोच लेंगे तो आप मुझे बता दीजिएगा। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.
2: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना
3: यस बेबी बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड
2: ऐसा क्या खास है वहाँ
3: सब कुछ क्वालिटी स्पाइसेस लेंटिल्स राइस फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट लैम्ब चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए
2: अरे वाह इंटेलिजेंट हो गई हो
3: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999 ओपन 7 डेज फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au 1/268 किंगस्टन रोड स्लैक्स क्रीक फोन नंबर 3804-3818 दैट्स 3804-3818
4: जी हाँ दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ और इससे पहले हम अपने प्रोग्राम में आगे की ओर बढ़े आइए जरा सबसे पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बात कर लेते हैं और आपके पार्टिसिपेशन से ज्यादा आपकी फरमाइशों से ज्यादा इम्पोर्टेंट और क्या हो सकता है मतलब बहुत सारी चीजें खास हो सकती है इम्पोर्टेंट हो सकती है लेकिन हमारे लिए आपका साथ आपकी फरमाइशें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो आइए आपको बता दें कैसे आप अपनी फरमाइश अपने फेवरेट गाने यहां पर हमें भेज सकते हैं और हम उन्हें आपके लिए प्ले करेंगे जी हाँ आपने सही सुना सो आपको करना क्या है आपको अपना फोन उठाना है एक नंबर डायल करना है नंबर है +9182888717701 आई रिपीट +9182888717701 तो बस फिर जल्दी से फोन उठा लीजिए नंबर डायल कर दीजिए भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश क्योंकि आपकी फरमाइशों के बिना तो हम जल बिन मछली जैसे हैं जी हाँ क्या बात है आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा इसीलिए हम कहते हैं कि कहावतें और शायरों शायरी मत किया करो क्योंकि तुम उसको खतरनाक तरीके से चीरफाड़ कर देती हो उसकी ओके ठीक है अगर आपने बोला तो मैं नहीं करूंगी तो आइए सबसे पहले आपके लिए एक और गाना प्ले करते हैं और मुझे आपकी फरमाइशों का इंतजार तो जल्दी से अपनी फरमाइशों के साथ आ जाइए अभी

say you should not drink and drive. Don't drink and drive. लेकिन आपने कभी ये सुना है कि please अगर आप drive कर रहे हो तो आप ये देखते हुए चलना कि कोई आपके सामने आ ना जाए drunk. जी हाँ, of course. अगर आप खुद drunk drive नहीं कर सकते हो, drink drive नहीं कर सकते हो, तो आपको ये भी तो देखना पड़ेगा कि सामने से कोई drunk होके आपकी गाड़ी के आगे ना आ जाए. आप लोगों और इंसानों का तो फिर भी समझ सकते हैं, लेकिन अगर आपके सामने drunk deer यानी कि ड्रंक पिया हुआ हिरन आ जाए तो आप क्या करोगे? जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि नीवे शर्मा, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, ड्रंक डियर, लाइक ये क्या बात है? तो आइए आपको बता दें, क्योंकि बहुत ही फनी माजरा है और इस माजरे को बहुत मतलब सीरियसली लिया जा रहा है फ्रेंच पुलिस की तरफ से. जी हाँ, सो फ्रेंच पुलिस ने वॉर्न किया है मोटरिस्ट को लुकआउट के लिए कि अगर उन्हें दिखता है कोई ड्रंक डियर तो प्लीज प्लीज वो रिपोर्ट करें, क्योंकि उस ड्रंक डियर को अब लेकर जाने का टाइम जो है वो आ गया है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा मस्ती करना पसंद है. अभी तो वो मस्ती घूम घूम के मजे से यहां वहां यू नो झूल के उछल कूद करके जो है वो कर रहा था, लेकिन उसके बाद जो है वो अगर रोड पे आ जाता है और अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है, उसको लग जाती है, किसी और का एक्सीडेंट हो जाता है, सो ऑफकोर्स ऐसे में किसी को भी रोड पे जाते हुए, एंड इट्स नॉट इन द सिटी बाय द वे, ऑफकोर्स इट्स नॉट इन द सिटी, इट्स इन द रूरल एरिया. सो पुलिस जो है वो, फ्रांस की पुलिस जो है वो वॉर्न कर रही है रूरल ड्राइवर्स को कि वो देखते रहे जाते जाते, जब भी चलते हैं, जब भी वो गाड़ियां चलाते हैं, कि उनको कोई ड्रंक डेयर तो नहीं दिख रहा है. अब ये हुआ कैसे? सो एक

जब इंसान ड्रंक हो जाता है, जैसी जैसी हरकतें इंसान करता है वैसी ही हरकतें वो कर रहा है. सो द फ्रेंच पुलिस जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ड्यूरिंग समर सम एनिमल्स में कंज्यूम बड्स, फर्मेंटेड फ्रूट्स और डिकेइंग प्लांट्स विच कुड बी द रीजन फॉर द अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर. जी हाँ, आप लोगों को लग रहा होगा कि लिटरली इसने विस्की की बॉटल तो नहीं खोल ली. ना ना ना ना ना, विस्की की बॉटल नहीं खोली है इसने. ये बेचारा दूसरे रीजन की वजह से, दूसरे कारणों की वजह से जो है वो ड्रंक हुआ है. मैंने जैसे आपको बताया कि फर्मेंटेड फ्रूट्स, डिकेइंग प्लांट्स और बर्ड्स जो है कुछ ऐसे होते हैं जिनको कंज्यूम अगर किया जाए तो वो आपको टिप्सी सी फीलिंग दे सकते हैं. मतलब नॉट हमें, नॉट इंसानों को, लेकिन अगर कोई जानवर ऐसा करता है तो डेफिनेटली वो टिप्सी फील करेगा. सो ऐसा ही कुछ जो है वो नजारा देखने को मिला. अब उनको एग्जैक्टली रीजन नहीं पता है कि सच में उसने बिस्की की बॉटल खोली थी या वो कुछ और प्रेफर करता है, या सच में वो बर्ड्स थे, या फिर सच में उसने फर्मेंटेड फ्रूट खा लिया था. ही पुलिस डज नॉट नो. द ओनली थिंग दे नो इज कि एक वीडियो है जो उनके पास है जहां पर एक हिरण बहुत ही मजे से नाच रहा है, कूद रहा है, मजे से मतलब फन कर रहा है. अरे आपको किसने बोला? क्या पता उसने टॉम एंड जेरी देख लिया हो, क्या पता उसने छोटा भीम देख लिया हो, क्या पता उसने कोई फनी सी वीडियो देख ली होगी इंटरनेट पे, राइट? वो हिरण उसलिए भी तो ऐसे कर सकता है मजे, और क्या. जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से. मतलब कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में ना इतनी सारी गड़बड़ चीजें हो रही है, पर कुछ चीजें बहुत ही फनी हो रही हैं. एंड ये फनी फनी चीजों को देखकर सोचकर हमें खुश होना है, क्योंकि हमें नेगेटिविटी से दूर रहना है. यहाँ पर ये एक और खासा खास गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
2: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।
3: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं कांस फिल्म फेस्टिवल की, क्योंकि कांस फिल्म फेस्टिवल का मतलब है हर दिन नए सेलिब्रिटीज उतरेंगे रेड कार्पेट पर, मूवीज देखेंगे जो मूवीज सेलिब्रेट होना डिजर्व करती हैं। जी हाँ, और फिर उसके बाद जो है इस प्रेस्टिजियस कांस फिल्म फेस्टिवल में लोग जो हैं वो शिरकत करते हुए बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो हैं ए लिस्टर्स सेलिब्रिटीज जो हैं वो नजर आएंगे। मैंने आपको कहा था कि कैसे आलिया भट्ट ने एंट्री मार ली है। उन्होंने पहले एक पीच कलर के गाउन के साथ एंट्री मारी थी, बहुत ही खूबसूरत था, और उसमें एक स्कार्फ और एक दुपट्टा जैसी सिचुएशन भी थी, लोगों को पसंद आया, लेकिन लोगों का कहना था कि कुछ और अच्छा भी हो सकता था। जी हाँ, अपने दूसरे लुक के लिए उन्होंने एक बहुत ही फ्लेयरी सी ड्रेस चूज की एंड पीपल आर लाइक वाई। आई मीन कुछ लोगों को वो पसंद आई है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि वाई क्या पहन लिया, क्यों पहन लिया। ऑन द अदर हैंड तारा सुधारिया की बात करें तो उन्होंने एंट्री मारी और क्या खूब एंट्री मारी। मतलब वो जो ओल्ड हॉलीवुड लुक होता है ना, उसके साथ उन्होंने एंट्री मारी। फिर चाहे वो वेव्स हो, ओल्ड हॉलीवुड वेव्स, या वो ड्रेस, या वो कैरी करने का तरीका, जैसे कि लिटरली कैरी किया करती थी हॉलीवुड सेलिब्रिटीज अपने आप को 90s में, 80s में और 70s में। सो यहां पर आलिया भट्ट के अलावा बाकी सब मुझे अच्छे से करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उर्वशी रौतेला के बारे में हम कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ, उर्वशी रौतेला ने काम खराब कर दिया है, क्योंकि उन्होंने वैसे काम तो बहुत जबरदस्त भी किया है अगर देखा जाए, लेकिन वो खराब क्यों है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले आपको बताते हैं कि उर्वशी रौतेला पहुंची है कांस फिल्म फेस्टिवल, वो भी 13,030 करोड़ की ड्रेस के साथ। मतलब 1,330 करोड़ की ड्रेस, नॉट 13,000 बट 1,300, मतलब 1,330 करोड़ रुपीज की जो ड्रेस है उसके साथ वो वहां पर पहुंची है। एंड ऑफ कोर्स वो इंडिया की ड्रेस नहीं है, किसी इंडियन डिजाइनर की वो ड्रेस नहीं है, वो एक वियतनामी डिजाइनर की ड्रेस है। और क्यों है वो अगर आपने उर्वशी रौतेला का वो लुक नहीं देखा तो जरूर देखिए। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद हर मेकअप, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद हर हेड गियर। आई मीन ऑफकोर्स इफ शी इज वेयरिंग वियतनामी डिजाइनर, सो ऑफकोर्स वियतनामी डिजाइनर, वो उनके कल्चर के हिसाब से, उनके रिचुअल्स के हिसाब से उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस बनाई है और कहीं ना कहीं उनके कल्चर को रिप्रेजेंट भी करती है। लेकिन उर्वशी रौतेला उसमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, एंड दैट ड्रेस इज अ मेस from all over the place. So, यहां पर 1,330 करोड़ रुपए की ड्रेस, लेकिन फिर भी कल्याणम, मतलब वो लेडी कल्याणम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उसके साथ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने उनका दबड़ी दिबड़ी ना ना ना ना ना ना वो देखा है? क्योंकि अगर आपने नहीं देखा है ना, और कभी आप पार्टी थ्रो करते हो तो वो गाना जरूर देखिएगा, वीडियो के साथ देखिएगा। हाँ, आपको ऐसा लग सकता है कि क्या अजीबो गरीब ये जेस्टर्स किए जा रहे हैं, बट आपको हंसी बहुत ज्यादा आने वाली है। सो आप मुझे बताइए कांस फिल्म फेस्टिवल में कौन जबरदस्त काम करता हुआ नजर आ रहा है? वेल ऑफकोर्स 1330 करोड़ रुपए की ड्रेस पहनकर उर्वशी रौटेला ने एक रिकॉर्ड तो बना दिया कि उन्होंने सबसे महंगी ड्रेस पहनकर वो पहुंच चुकी है वहां पर। लेकिन क्या वो लुक अच्छा था, वो आप ही डिसाइड करेंगे। और आप मुझे बताइए कि आपको वो लुक अच्छा लगा या नहीं लगा। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन बहुत ही खूबसूरत है।

जी हाँ दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको डायमंड्स पसंद है, आपको गोल्ड पसंद है या आपको कोई और जेम्स पसंद है, तो आपका आंसर क्या होगा? वेल, वो तो डिपेंड करता है, क्योंकि हर इंसान की अपनी पसंद है। किसी को डायमंड्स पसंद होते हैं, किसी को सोना पसंद है, किसी को रूबीज पसंद है, किसी को सैफायर्स पसंद है, किसी को कुछ और पसंद है। लेकिन अगर मैं कहूं कि दुनिया का सबसे बड़ा रूबी मिल गया है, अभी तक का सबसे बड़ा रूबी मिल गया है, जी हाँ, आप लोग बोलोगे कितना ही बड़ा होगा। मतलब हमने जो राजा महाराजाओं का टाइम था, जो हिस्ट्री है, उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि बड़े बड़े रूबीज जो हैं वो देखे गए हैं। उनसे बड़ा रूबी अभी तक कौन सा ही मिला होगा? वेल, म्यांमार में ये खोज हुई है, जहां पर 11,000 कैरेट का रेयर रूबी डिस्कवर किया गया है। जी हाँ, आपने सही सुना। एंड पर्सनली आई लव रूबीज, आई डोंट नो, आई हैव थिंक फॉर दैट, यू नो, फेरी रेड कलर, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही ज्यादा पैशनेट फील होता है। आई थिंक रूबी इज अ जेम ऑफ पैशन, आई डोंट नो, इट रिप्रेजेंट पैशन और समथिंग एल्स, बट आई लाइक इट एंड आई नो मैनी लाइक्स रूबीज। और रूबीज जो है वो लिटरली रेयर है। मैं हमेशा कहती हूँ कि डायमंड्स के पीछे हम जितना भागते हैं ना, डायमंड्स जो है वो सच में कंज्यूमरिज्म को बढ़ाने के लिए मार्केट किए गए थे। डायमंड्स आर नॉट रेयर, बहुत रेयर वाली जेम्स। जी हाँ, डायमंड जो है वो सबसे पहले भारत से ही शुरू हुए थे। मतलब सबसे पहला डायमंड जो है वो भारत में ही मिला था, और उसके बाद जो है वो डायमंड्स को रेयर रेयर रेयर रेयर ऐसा बोला गया, ऐसा मार्केट किया गया, पर ऐसा नहीं था। बहुत सारे डायमंड्स जो हैं वो मिलते हैं, ऑफकोर्स कुछ थोड़े ज्यादा बड़े होते हैं, कुछ थोड़े डिफरेंट कलर्स के होते हैं, बट डायमंड्स आर नॉट रेयर। इनफैक्ट अदर स्टोन्स आर मोर रेयरर देन डायमंड्स। और ये जो कंज्यूमरिज्म की बात है कि कैसे हमें ये मार्केट किया गया कि डायमंड्स आर सो रेयर, डायमंड्स सो एक्सपेंसिव, और हम उनके लिए कितने ज्यादा पैसे अपनी जेब से खर्चने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसको मार्केट किया गया ऑफ कोर्स बाय द ब्रिटिशर्स, फ्रॉम द स्टार्टिंग बाय द ब्रिटिशर्स, एंड दैट्स हाउ इट गॉट स्टार्टेड। बट अगेन, जैसे हम रूबी की बात कर रहे हैं, तो रूबीज आर रियली रियली ब्यूटिफुल एंड इट कैन बी लाइक रियली, यू नो, एड ऑन टू योर चार्म्स। बट द थिंग इज कि रूबीज जो है वो कितने भी बड़े हों, वो ऑफकोर्स किसी ना किसी के पास लैंड अप अभी तक हो गए, लेकिन ये मैसिव 11,000 कैरेट का रूबी जो है, जो कि मिला है म्यांमार में, जी हाँ, माइनर्स ने म्यांमार में डिस्कवर किया है। और मैं आपको बता दूं कि ये कोई नॉर्मल एरिया नहीं है, बल्कि ये वॉर टोन रीजन है, जहां पर उसके हार्टलैंड में ये जेम माइनिंग जो है वो होती है, एक इंडस्ट्री जो है वो सेटअप है। और यहां पर उसके जो प्रेसिडेंट है मिन ओंग हांग, उनके ऑफिस से ये बताया गया, उसके ऑफिस के द्वारा बताया गया कि कैसे ये खूबसूरत सा रूबी, जिसकी अगर हम दूसरे तरीके से उसके वजन की बात करें, तो 11,000 कैरेट का मतलब हुआ 5 पाउंड रूबी। जी हाँ, 5 पाउंड का रूबी मिला है। नाउ आई कैन रियली इमेजिन एंड ओनली इमेजिन कि ये किसके पास जा सकता है। वेल, ऑफकोर्स नीता अंबानी के पास तो ये डेफिनेटली जा सकता है। जी हाँ, वेल ऑफकोर्स जब भी हम बात करते हैं खतरनाक, यू नो, स्टोन्स की, जेम्स की, तो नीता अंबानी स्टैंड स्टॉल, मतलब अंबानी फैमिली की ये लेडी के पास ऐसे ऐसे स्टोन्स हैं जो लोगों ने इस दुनिया में देखे भी नहीं है। मतलब उनको लगता था कि ये मतलब है भी नहीं। अभी थोड़े दिन पहले उनकी बेटी ईशा अंबानी मेट गाला में आई थी, और उन्होंने हैदराबाद की लास्ट रॉयल फैमिली के निजाम का ब्रूच अपने ब्लाउज में पीछे उसे स्टिच किया हुआ था। जी हाँ, मतलब हैदराबाद के निजाम का ब्रूच, जो कि वो अपनी पगड़ी पे लगाया करते थे, वो उन्होंने अपनी पीस ऑफ क्लोथ पे स्टिच किया हुआ था, बिकॉज अपेरेंटली वो बहुत ही ज्यादा महंगे कपड़े पहनकर वहां पहुंची थी। उनका जो ब्लाउज था वो लिटरली हीरो से बना हुआ था। और इनफैक्ट ये थोड़ी सी फनी बात भी हो रही है, लेकिन थोड़े दिन पहले वेनिस में NMACC के लॉन्च के लिए पहुंची थी, और वहां पर उन्होंने बहुत ही कम ज्वेलरी पहनी हुई थी। वेल ऑफकोर्स उनके गेट जो अटायर था उनके साथ वही जा रही थी, लेकिन लोगों का कहना था, और लोग जो है इसके मीम बना रहे थे, कि ऑफ कोर्स नीता अंबानी इतनी कम ज्वेलरी में इसलिए पहुंची क्योंकि सारी की सारी ज्वेलरी और सारे के सारे हीरे तो ईशा अंबानी के ब्लाउज में लग गए। जी हाँ, एंड द थिंग इज कि लोग कैन बी रियली रियली क्रिएटिव, बट 11,000 कैरेट का रूबी इज रियल एंड रेयर, एंड आई एम काइंड ऑफ एक्साइटेड। मतलब कितने खूबसूरत होते हैं ये जेम्स, राइट? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, जरूर मुझे बताइएगा। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: ਕੰਟੇਨਰਸ ਫੋਰ ਚੇਂਜ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਯੋਗ ਖਾਲੀ ਕੈਨ, ਬੋਤਲ ਅਤੇ ਕਾਰਟਨ ਉੱਤੇ 10 ਸੈਂਟ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਨ ਕੁਆਇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਬਿਨ ਕੁਆਇਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਖਰਚੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰਸ ਫੋਰ ਚੇਂਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਨਾ ਕਿ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਫੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ 10 ਸੈਂਟ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
1: ਮੈਂ ਚਾਹਤੀ ਹੂੰ ਇਸ ਬਾਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੇਂ ਬੈਸਟ ਜੁਐਲਰੀ ਮੈਂ ਹੀ ਪਹਿਨੂੰ, ਪਰ ਕਹਾਂ ਸੇ ਖਰੀਦੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। I'm so confused.
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या? प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
3: हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव के सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।
4: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
5: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
4: गो फॉर द बेस्ट वीरे, अतुल भारद्वाज जी नो अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमीग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
5: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
4: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
6: Yaar, sab theek hai. Bas mummy papa India mein akela feel karte hain. Unorganized helpers pe bharosa bhi nahi hota. Kal ko emergency ho jaye to?
7: तूने ओम्स ओर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
6: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
7: बिल्कुल। ओम्स ओर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम, इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओमजोग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओमजोग असिस्टेड लिविंग, जहाँ केयर का मतलब है रियल केयर।
8: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों इसी के साथ अब जरा बात कर लेते हैं ऑफ कोर्स खूबसूरत एक्ट्रेस मानुषी छिल्लर की। जी हाँ, मानुषी छिल्लर का है आज जन्मदिन और ऑफ कोर्स उन्होंने मिस वर्ल्ड टाइटल को जीतने के बाद एक अच्छी शुरुआत करने की कोशिश की थी बॉलीवुड में, लेकिन ऑफ कोर्स वो उतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई है। लेकिन विजडम और इनका काम करने का तरीका लोगों के लिए बहुत ही खास है। और अभी उनका एक नया गाना भी आया है। जी हाँ, इनका एक नया गाना आया है जो काफी लोगों को हैरान परेशान कर रहा है और साथ में डांस करने पर मजबूर भी कर रहा है। बट इट्स अ सिजलिंग हॉट सिचुएशन जो कि हिमेश रेशमिया के साथ इन्होंने की है। ऑफकोर्स इनका जन्मदिन है आज, तो आज हम इनको बर्थडे विश तो करेंगे ही, हैप्पी बर्थडे मानुषी। हम यही कहेंगे कि आप अच्छे से जिस जिस चीज के लिए आपने शुरुआत की थी इस खूबसूरत सफर की मिस वर्ल्ड की, वो उसके लिए आप हमेशा काम करते रहें, और ऑफकोर्स बॉलीवुड में भी आपका सितारा चमके, बहुत सक्सेस आपको मिले, और जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये साल आपके लिए अच्छा रहे, यही हमारी दुआ भी है आपके लिए। दोस्तों इसी के साथ एक बहुत ही खूबसूरत पुरानी एक्ट्रेस का भी आज जन्मदिन है, जिसके बारे में मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं आपको गेस करने के लिए कह रही हूं, आप गेस कीजिए कौन हो सकती है वो, लेकिन मैं इतना आपको बता सकती हूं, इतना आपको जो है हिंट दे सकती हूं कि वो एक ऐसी एक्ट्रेस है जिसने हर किसी बड़े एक्टर के साथ काम किया है, जिनकी ग्रेस को, जिनके पॉइज को हर एक पुराना एक्टर मानता है, उनको रिस्पेक्ट करता है। आप गेस कीजिए, क्योंकि हम उनको बर्थडे विश करने वाले हैं, लेकिन हम उसकी शुरुआत करेंगे ओल्ड इज गोल्ड में। लेकिन उससे पहले आप गेस करके बताइए मैं किसके बारे में बात कर रही हूं। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी दोस्तों, और इसी के साथ एक हस्बैंड अपनी वाइफ को कहता है कि एक वाइफ अपने हस्बैंड को कहती है कि यू हैव पुश्ड ऑल माय बटन्स टुडे. तो पति सामने से कहता है बट आई स्टिल कुड नॉट मैनेज टू यू नो पुट दैट बटन पुश दैट बटन. जी हाँ. एंड देन शी वॉज लाइक कि ओके कौन सा बटन? कहते म्यूट बटन. जी हाँ, मतलब पत्नी कह रही है कि पति को कि बस गड़बड़ मत करो, यू हैव ऑलरेडी पुश्ड ऑल माई बटन्स टूडे. तो बंदा कह रहा है, पति कह रहा है कि ओके ठीक है, बट आई स्टिल कुड नॉट आई स्टिल वॉजन एबल टू पुश दैट वन बटन. एंड देन जब वाइफ पूछती है कि कौन सा बटन, कहता म्यूट बटन. मतलब बीवियां बहुत ज्यादा बोलती हैं, ये कौन कहता है? अरे मर्द लोग जो हैं, जो बंदे लोग हैं, वो सुनते ही नहीं है तो हम क्या करें? मतलब अब बंदे लोग सुनेंगे नहीं तो औरतों को ज्यादा बोलना पड़ेगा, महिलाओं को ज्यादा बोलना पड़ेगा. और फिर वो ब्लेम करते हैं किसको कि औरतें ज्यादा बोलती हैं. अरे अगर आप एक बारी में सुन लेंगे तो दूसरी बार बोलेंगे नहीं. और आप तो दो बारी का, तीन बारी का, चार बारी का, पांच बारी में भी नहीं सुनते हैं. और वो जो कहा है ना किसी ने कि आप शादी जरूर करते हो किसी बंदे के साथ, लेकिन उनके कानों की सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको अलग से लेनी पड़ती है. सो यहां पर आप अगर कहोगे कि आप बीवी बोलती रहती है, सुनाती रहती है, तो उससे काम नहीं चलेगा. क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप सुन लोगे एक ही बारी में तो वो दूसरी बार बोलेंगी नहीं, वो चुप हो जाएंगी. जी हाँ, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको अपने आप में सुधार करने की जरूरत है. जी हाँ, अब आप लोग बोलोगे कि नीवा शर्मा, ये जो तुम लेडीज लोगों की साइड ले रही हो ना, हाँ हमें सब समझ आ रहा है. वेल ऑफ कोर्स आई एम अ लेडीज, सो आई विल टेक लेडीज साइड, राइट? आई मीन यू कांट ब्लेम मी फॉर दैट. आई मीन इट्स अ बायोलॉजिकल थिंग. यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन बहुत ही जबरदस्त है, और ये गाना हर शादी में बजना चाहिए, तभी तो शादी का मजा आता है.

0: surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the Great Australian Dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: Anuj, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
3: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
4: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
3: अच्छा, वो क्या?
4: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
3: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
4: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
5: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
6: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
7: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
6: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
7: अरे, ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है, और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
6: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
7: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
6: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
7: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है, और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
8: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों, अब जरा सबसे पहले चलते हैं खबरों की ओर। जी हाँ, खबरों की तरफ जाने का वक्त हो गया है। क्या है खबरों में, दुनिया में क्या चल रहा है, भारत में क्या चल रहा है, हमारी कंट्री में क्या चल रहा है, सब चीजों के बारे में बात होगी। और क्या है वॉर फ्रंट पे, उन चीजों पर भी बात होगी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारत से, जहां से अच्छी खबर नहीं है, खासकर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान से 89 लोगों की मौत हुई है। जी हां, बुधवार को आए तेज तूफान, बारिश और ओलावृष्टि के चलते उत्तर प्रदेश में जान माल का भारी नुकसान हुआ है। राज्य आपदा प्रबंधन और राहत कार्यालय के मुताबिक इस आपदा में 89 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक तूफान, बारिश, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली की घटनाओं में 53 लोग घायल भी हुए हैं। इसके अलावा 87 मकानों को नुकसान पहुंचा है और 114 यानी कि 114 मवेशियों को की भी मौत हुई है। टीवी तस्वीरों में तेज हवाओं से पेड़ और होर्डिंग उगड़ते दिखाई दिए। कुछ पेड़ और बोर्ड कारों पर गिर गए, जबकि धूल और मलबे के गुबार ने सड़क किनारे दुकानों का, लकड़ी के दुकानों का भी भारी नुकसान किया। राइटर्स के मुताबिक राज्य राहत विभाग

विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि कई लोगों की मौत पेड़ गिरने और मकानों की दीवार ढहने की वजह से हुई। उत्तर प्रदेश के रिलीफ कमिश्नर के एक्स अकाउंट से जारी एक बयान में कहा गया है कि 13 मई को खराब मौसम के कारण आंधी तूफान बारिश ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली से प्रदेश में 89 जनहानि 53 घायल 114 यानी कि 114 पशु हानि तथा 87 मकान क्षति की सूचना प्राप्त हुई है जिसका संज्ञान मुख्यमंत्री जी द्वारा लिया गया है।

जी हाँ दोस्तों, वही खबरों की बात हो रही है। दिल्ली में प्राइवेट स्लीपर बस के अंदर महिला से गैंग रेप का आरोप, दो गिरफ्तार। जी हाँ, मतलब कुछ चीजें जो हैं वो कभी नहीं सुधर सकती। और जब भी हम इन चीजों के बारे में बात करते हैं, हमारा दिल जो है उसमें इतना रोष होता है, इतना गुस्सा होता है हमारे में, लेकिन फिर भी क्या ये सोसाइटी सुधरने का नाम लेती है? नहीं। जी हाँ, दिल्ली पुलिस ने नंगलोई इलाके में एक प्राइवेट स्लीपर बस के अंदर महिला से गैंग रेप के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पुलिस अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी कि बताया जा रहा था कि यह घटना 12 मई को हुई थी। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान बस के ड्राइवर और कंडक्टर के रूप में हुई है। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आगे की जांच के लिए बस को भी जब्त कर लिया गया है। समाचार एजेंसी एएनआईए के अनुसार दिल्ली पुलिस ने कहा कि पीएस रानी बाग में गैंगरेप मामले में 12 मई को बीएनएस की धारा 64, 171 और 35 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले में अभियुक्तों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आगे की जांच जारी है। बट ये जांच जारी होने के बावजूद भी क्या ये चीजें होती हैं? वेल ऑफकोर्स होंगी, तो किसके लिए क्या चाहिए? वेल खतरनाक सजा, और खतरनाक सजा की जरूरत ऐसे जघन्य अपराध करने वालों को बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन क्या हमारा जुडिशियल सिस्टम या किसी भी और कंट्री का जुडिशियल सिस्टम ऐसा करता है? अप्रोप्रिएट सजा, वी ऑल टॉक अबाउट दुबई कितना अच्छा है, दुबई में कितना सेफ फील होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, लेकिन वी डिड नॉट टॉक अबाउट कि कैसे दुबई के जो कानून है, जो नियम है, इतने ज्यादा सख्त हैं कि वहां पर लोगों को और किसी भी जो ऐसा अपराधी है उसको क्राइम करने से डर लगता है। और देशों का हाल इसलिए खराब है क्योंकि वहां पर जुडिशियल सिस्टम इतना स्ट्रांग है ही नहीं।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ खबरों का सिलसिला चल रहा है और अभी की सबसे बड़ी खबर तो यही है कि फाइनली मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप पहुंच चुके हैं चाइना में और उनकी चाइनीज यात्रा जो है वो ऑफकोर्स कितनी ज्यादा प्रभावशाली होगी वो तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि उसके बारे में अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई है, कुछ भी चीजों को जो है वो पब्लिक नहीं किया गया है। लेकिन यहां पर लोग अपने सूटकेस में कपड़े भरकर लाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे हैं बड़े बड़े बिलियनियर्स और मिलियनियर्स को भरकर। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि ऑफकोर्स ये पॉलिटिकल वाली सिचुएशन भी है, मतलब मैं आपको खबर के बारे में भी बताऊंगी, लेकिन रोस्टिंग सेशन जो है वो साथ के साथ चलेगा। मतलब ट्रंप वही है जो हर दूसरे दिन ये कहते हैं चाइना ऐसा है, चाइना वैसा है, चाइना ने ये कर दिया, चाइना ने वो कर दिया, लेकिन अब वो बड़े ही अच्छे से अपनी पूरी 32 सी निकाल कर चाइना की धरती पर उतर गए और बड़े ही अच्छे से ऐसे करके देख रहे हैं लोगों को और बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो मैंने कहा वो आपने सुना या नहीं सुना कि लोग अपने बक्से में, अपने ब्रीफकेस में कपड़े लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां पर ट्रंप अपने बक्से में यानी कि अपने प्लेन में लेकर पहुंचे हैं बड़े बड़े मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स को, फिर चाहे वो टिम कुक हो, फिर चाहे वो एलन मस्क हो, फिर चाहे वो जेसन हुआंग हो, मतलब बड़े बड़े बिलियनेयर्स और मिलियनेयर्स आपको इसमें दिखेंगे। मेटा के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यू नो एप्पल के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और इनफैक्ट दूसरी और बड़ी कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स भी आपको इसमें नजर आएंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जहां तक हमें पता है इस इंसान को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि चाइना हमारी टेक्नोलॉजी चुरा रहा है, चाइना हमारी टेक्नोलॉजी चुराता आ रहा है, चाइना ने हमारी टेक्नोलॉजी चुराकर ये बना लिया वो बना लिया, लेकिन फिर अगर ऐसा ही है तो ये इतने सारे बिलियनियर्स और मिलियनियर्स को लेकर पहुंचा क्यों है? चलिए आप गेस कीजिए और फिर हम आपको बताएंगे कि क्यों पहुंचा है, क्योंकि उसके बाद बताने में भी तो मजा है, राइट? मतलब थोड़ा तो यहाँ पे सस्पेंस होना चाहिए, बिना सस्पेंस के बात कैसे बनेगी। सो यहाँ पर जो गाना मैं अब आपको सुनाने वाली हूँ वो भी खास है एंड इट्स अ वेरी रोमांटिक सॉन्ग, मतलब रोमांटिक है ये गाना काफी, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि क्यों बक्से में भरकर मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स आए हैं ट्रंप के साथ।

जी दोस्तों, इसी के साथ अब जैसे आपको पता ही है, हम खबरों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन खबरों के साथ साथ रोस्टिंग सेशन भी चलने वाला है, तो अगेन रेडी हो जाइए। मैंने आपको कहा था कि ट्रंप पहुंच गए हैं फाइनली चाइना, और चाइना में वो शी जिनपिंग से मिल भी लिए हैं। जी हाँ, पहुंचते ही जो है वो उनका स्वागत किया गया। वेल ऑफकोर्स बड़े ही कल्चरल तरीके से, जैसे चाइना की हेरिटेज जो है, कल्चर जो है, वो बहुत ही ज्यादा रिच है, और इसके मामले में वो बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं, और करना भी चाहिए। फिर चाहे वो चाइना हो, चाहे भारत हो, मतलब जो कंट्रीज हैं जो कल्चरली रिच हैं, हेरिटेजली रिच हैं, उनको डेफिनेटली प्राउड करना चाहिए। तो वैसे ही स्वागत हुआ। ट्रंप जो है वो प्लेन से उतरते हैं और उनके पीछे एक एक करके बड़े बड़े बिलियनर्स उतरते हैं। एलन मस्क दिखते हैं, जेसन हुआंग दिखते हैं, टिम कुक दिखते हैं, और अलग अलग बड़ी टेक कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव भी वहां पर नजर आते हैं। मैंने आपसे पूछा था कि क्या लगता है ये जो झोली में भर के, यानी झोली में भर के नहीं, बक्से में भर के, बक्से में भर के नहीं, हेलीकॉप्टर यानी कि प्लेन में भर के जो उनको लाया गया है, वो क्यों लाया गया? क्या वो लोग आने के लिए तैयार थे? शायद आने के लिए तैयार थे। और क्या ट्रंप उन्हें जबरदस्ती लाए? ये भी हो सकता है, वो जबरदस्ती ला सकते हैं, क्योंकि ट्रंप लिटरली लोगों के साथ जबरदस्ती करने में माहिर है। नाउ वॉट एग्जैक्टली दे वॉन्ट, उनको चाहिए क्या है? बड़े बड़े बिलियनर्स और मिलियनर्स के साथ पहुंचने का मकसद यही है कि वो चाइना के साथ अपने रिश्ते, अपना ट्रेड और अपना जो टेक्निकल जो उनका रिलेशनशिप है, उसको और भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऑफकोर्स चाइना के हाथ में, मुट्ठी में है रेयर अर्थ मेटल्स की तिजोरी की चाबी। अब रेयर अर्थ मेटल्स मिलेंगे तभी तो वो एलन मस्क अपनी गाड़ी बना पाएंगे टेस्ला, अपना ऑप्टिमस बना पाएंगे रॉबर्ट, जी हाँ, तभी तो जेसन हुआंग जो है वो अपनी चिप्स जो है वो चाइना को दे पाएंगे। जी हाँ, जेसन हुआंग जो है वो चिप्स जो है, एनविडिया जो है वो सबसे बड़ी चिप कंपनी है, चिप मेकिंग कंपनी है, सो ऐसे में चिप्स जो है वो अपनी चाइना को देना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके लिए चाइना ने जो है वो बहुत ही सख्त कदम उठाए हैं। वो चाह रहे हैं कि सब कुछ वो अपनी ही कंट्री में बनाए, वो दूसरी कंट्री का कुछ भी ना खाएं। दूसरी कंट्री का कुछ ना खाने में ही भलाई है, क्योंकि यहां वहां से वायरस आ जा रहे हैं। ऑफकोर्स I was not exactly talking about खाना, but I was talking about कि कैसे ये आदान प्रदान जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कुछ वक्त पहले आपने देखा था कि ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच में बहुत खतरनाक तेजो तर्रार हथियार चल रहे थे, मतलब जुबानी हथियार चल रहे थे, नॉट द रियल हथियार, ना, डोंट वरी, उनके बीच अभी कुछ शुरू नहीं हुआ है। सो जुबानी हथियार चल रहे थे, जहां पर यह कहा जा रहा था कि मैं ट्रेड लगा दूंगा, मतलब मैं ट्रेड पे टैरिफ लगा दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। जब चाइना ने अपनी रेयर अर्थ मेटल्स की तिजोरी की चाबी घुमाई और उन्होंने कहा कि ओके ठीक है, तुमको जो करना है तुम करो, हमको तुमसे कोई लेना देना ही नहीं है, हाँ तुमको जो करना है तुम करो और हमको जो करना है वो हम करेंगे, हम तुमको रेयर अर्थ मेटल्स ही नहीं देंगे, कहां से तुम्हारे AI बनेगा, कहां से तुम्हारे रोबोट्स बनेंगे, कहां से तुम्हारे हथियार बनेंगे, तुम्हारा पेंटागन का क्या होगा जो यहां? और यही बोलकर उन्होंने बस अपना फोन रख दिया। और चाइना तो सीधा सीधा कहता है कि देखो भाई, हम लोग हमेशा से यहां पर है, मतलब हम लोग 6,000-7,000 साल पहले से यहां पर है, अमेरिका कौन है, कौन है अमेरिका? चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर हमेशा से ये कहते आए हैं, और बड़े बड़े जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी ये कहते आए हैं। अमेरिका की बिसात नहीं है कि वो चाइना से पंगा ले, तो अपने सारे चुन्नू मुन्नू, I'm talking about the millionaires, billionaires. So can we just talk them like name them Chunnu and Munnu? Because I don't know, this situation is so funny. कि वो जो होता है ना situation, कि मतलब एक बंदा आता है और अपने सारे के सारे tricks and tips and tricks जो है लेके आ जाता है, एक magician आता है, वो अपनी झोली में भर के लाता है कि ओके अगर इससे बात नहीं बनेगी तो ये दिखाऊंगा, इससे बात नहीं बनेगी तो ये दिखाऊंगा, वैसे ही सिचुएशन यहाँ पर लग रही है। अब इसके बारे में और भी हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास बात करने के लिए काफी कुछ है, लेकिन यहाँ पर एक और बहुत ही खूबसूरत सा गाना मैं आपको सुनाने वाली हूं, जो कि अगेन आपको मस्ती के माहौल में ले जाएगा।

0: this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
10: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
11: I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
10: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
11: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
10: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
12: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया.
13: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें.
12: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
13: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं. ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं.
12: मुझे तो पता ही नहीं था. अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
13: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो.
14: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस. और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435, याद रहे 0400-644-35, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर.
15: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है.
16: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं. आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है. इसे हम बिन कॉइन कहते हैं. अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें. आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में. अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें.
6: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ. दोस्तों यहाँ पर अब जरा बात करते हैं अगेन ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात के बारे में, क्योंकि ट्रंप और शी जिनपिंग की शुरुआती संबोधन ने में उन्होंने क्या कहा, आइए जरा वो आपको बताते हैं. चीन पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शुरुआती संबोधन में शी जिनपिंग से मुलाकात को सम्मान की बात बताया. वहीं चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार बनना चाहिए. अभी कुछ वक्त पहले तक ये विलन बता रहे थे, चीन इज अ विलन, अब ये बहुत ही सम्मान की बात हो गई है. पलटू लोग हैं, राइट? जी हाँ, आगे की बात सुनिए. आज ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता हो रही है और उससे पहले दोनों राष्ट्रपतियों ने शुरुआती संबोधन में कई बातें कही. ट्रंप ने कहा कि हमारे संबंध अच्छे रहे हैं, जब भी कोई मुश्किल आई हमने उसे मिलकर सुलझाया. मैं आपको फोन करता था और आप मुझे फोन करते थे, लोगों को नहीं पता लेकिन जब भी कोई समस्या हुई हमने उसे बहुत जल्दी हल किया. आई डोंट नो बट वाई इज इट सो फनी. फनी क्यों है ये इतना? जी हाँ, उन्होंने कहा मैं हर किसी से कहता हूं कि आप एक मेहमान नेता हैं. ओह, महान नेता हैं. मेरे मुंह से भी असलियत निकल रही है, मेहमान नेता हैं. जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वो इस दौरे पर दुनिया के सबसे बेहतरीन कारोबारी नेताओं को अपने साथ लाए हैं और उन्होंने कहा आज यहां सिर्फ शीर्ष लोग मौजूद हैं जो आपका सम्मान करने आए हैं. उन्होंने कहा कि आपके साथ होना सम्मान की बात है और आपका दोस्त होना भी सम्मान की बात है. ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका और चीन के संबंध पहले से कहीं बेहतर होने जा रहे हैं महर्षि जिनपिंग ने क्या कहा, क्योंकि ट्रंप ने बहुत कुछ कहा. एंड यू नो व्हाट द फनी सिचुएशन इज, उससे जिससे पहले मैं आपको बताऊंगी शी जिनपिंग ने क्या कहा. कभी भी आप देखिएगा, जब भी शी जिनपिंग किसी से मिलते हैं और अगर वो सच में किसी से मिलना चाहते हैं तो उनके चेहरे पे ना थोड़ी स्माइल होती है. और अगर उनकी मजबूरी लग रही है कि हाँ ठीक है ये क्या देश है मेरे से मिलने आ गया, ये कौन है, मतलब, तो वैसी सी जो वो एक ऐसी चेहरा बनाते हैं, एक ऐसा एक्सप्रेशन बनाते हैं जो कि लिटरली कॉन्स्टिपेटेड इंसान बनाता है, लिटरली. सो यहां पर शी जिनपिंग जो है वो थोड़ी से स्माइली फेस के साथ तो नजर आ रहे थे, क्योंकि रशिया के व्लादिमीर पुतिन जब भी आते बड़े खुश नजर आते शी जिनपिंग. लेकिन यहां पर ट्रंप आए हैं तो वैसा एक्सप्रेशन नहीं है, पर उतना बुरा भी नहीं है. जी हाँ, ट्रंप और उनके प्रतिनिधिमंडल के सामने शुरुआती संबोधन में शी जिनपिंग ने कहा कि हमें प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए, हमें एक दूसरे की सफलता और समृद्धि में सहयोग करना चाहिए और नए दौर में बड़े देशों के आपसी संबंधों का सही रास्ता तलाशना चाहिए. शी जिनपिंग ने कहा कि वो ट्रंप के साथ चर्चा और मिलकर काम करने के लिए उत्सुक है ताकि चीन अमेरिका संबंधों की विशाल नौका को सही दिशा दी जा सके और 2026 को ऐसा ऐतिहासिक साल बनाया जा सके जो संबंधों के नए अध्याय की शुरुआत करे. उन्होंने अमेरिका की आजादी के 250वें वर्ष पर ट्रंप और अमेरिकी जनता को बधाई भी दी. शी ने कहा कि पूरी दुनिया हमारी इस मुलाकात को देख रही है, हम समय दुनिया में ऐसा बदलाव तेज हो रहा है जैसा पिछले 100 सालों में नहीं देखा गया और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति लगातार बदलती और अस्थिर बनी हुई है. उन्होंने कहा कि दुनिया एक नए मोड़ पर पहुंच गई है. क्या चीन और अमेरिका थ्यू सी आईडिस ट्रैप से बाहर निकलकर संबंधों का नया मॉडल बना सकते हैं? क्या हम वैश्विक चुनौतियों का मिलकर सामना कर दुनिया को ज्यादा स्थिरता दे सकते हैं? पर भाई वैश्विक चुनौतियां तो आप जिससे मिल रहे हैं उसी ने खड़ी की हैं. मतलब ट्रंप ने ईरान के साथ अगर वो वॉर नहीं छेड़ी होती तो हम सब इतने खतरनाक हालत में नहीं पहुंच जाते. आप लोग बोलोगे हम दोनों मिलकर इसका सामना करेंगे. अरे किसका सामना करेंगे? ऐसा करो, आप उसको साइड करो और सब कुछ सुलझ जाएगा. जी हाँ, आई डोंट नो ये मुझे क्यों नहीं बुलाते हैं सब करने के लिए. यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ एक बड़ी ही दिलचस्प वीडियो है जो कि वायरल हो रही है इंटरनेट पर। मुझे नहीं पता आपने देखी है नहीं देखी, लेकिन उसके बारे में मुझे बात करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ऑफकोर्स उसमें मुझे पता चल गया है कि एनिमल्स यानी कि जो ये बेजुबान क्रिएचर्स हैं ये कितने ज्यादा समझदार है। वेल, दे आर वेरी वेरी वेरी स्मार्ट, दे आर जस्ट नॉट वेरी कनिंग जस्ट लाइक अस ह्यूमन बींग्स, बट दे आर वेरी स्मार्ट। जी हाँ, सो वीडियो में कुछ हो रहा है, मैं आपको बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वीडियो में एक बंदा जो है वो अपनी भैंस यानी कि बुफेलो के पास, बुफेलो की छोटी बेटी के पास, मतलब बुफेलो का जो बच्चा है, फीमेल बच्चा है, उसके पास वो एक कंटेनर में दूध लेकर आता है, क्योंकि आपको पता ही है जब भी गाय या भैंस जब बच्चे देती हैं तो उनको भी दूध की जरूरत होती है, और वो सारा का सारा दूध वैसे लॉजिकली उन्हीं का होता है, लेकिन हम उससे उनसे वो छीन लेते हैं और हम वो पी जाते हैं। नाउ आई एम नॉट गोना गो इनटू डीप इनटू दैट, क्योंकि वो ऑफ कोर्स थोड़ा सी सीरियस कॉन्वर्सेशन हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ी फनी फनी बात करने वाले हैं। सो वो बंदा बड़ी स्टाइल से लेकर जाता है एक कंटेनर में दूध और वो उसके सामने रख देता है, लेकिन वो जो भैंस की बच्ची है वो बिल्कुल उसे देखती है और उसको घूरती रहती है और वो दूध पीने से मना कर देती है, मतलब वो दूध पीती नहीं है। अब आप लोग बोलोगे कि ये तो हमने पहली बार ही देखा है, शायद उसको भूख नहीं होगी, शायद कुछ कोई भी रीजन हो सकता है, शायद उसका पेट खराब होगा, या एनीथिंग कैन बी अ रीजन, राइट। वेल, अब मैं आपको बताने वाली हूं वो दिलचस्प बात जो कि इस वीडियो को खास बनाती है। सो वो व्यक्ति उस बफेलो के बेबी को एक स्ट्रॉ देता है। वेल ऑफ कोर्स इट्स नॉट लाइक ह्यूमन स्ट्रॉ, जो हमारे लिए स्ट्रॉ बनी होती है, जिस स्ट्रॉ से हम अपने कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं या वो दूसरी चीजें पीते हैं, वैसी स्ट्रॉ नहीं है। ऑफ कोर्स उनके लिए बड़ी स्ट्रॉ चाहिए, सो एक बड़ी स्ट्रॉ टाइप चीज जो है वो उसके सामने उसके मुंह में जो है वो डाल दी जाती है, और वो बड़े ही अच्छे से उसे फटाफट खींच लेती है और फिर वो उसके थ्रू दूध को पीती है। या आपने सही सुना, एंड आई वाज लाइक वाओ, क्या देखा मैंने, जी हाँ क्या देखा मैंने ये, एंड आई वाज लाइक कि कितने ज्यादा स्मार्ट हैं और कितने ज्यादा शौकीन हो सकते हैं एनिमल्स भी। मतलब शी वाज लाइक कि ओके, आई एम नॉट गोना ड्रिंक दैट मिल्क फ्रॉम माय माउथ, मतलब क्या पता मेरा लिप कलर खराब हो जाए। आई मीन ऑफकोर्स वो ऐसा सोच रख सकती है, राइट, मतलब क्या पता वो यही सोच रही हो। तो शी वाज लाइक कि ओके, मैं सिर्फ स्ट्रॉ से पीऊंगी और मैं सिर्फ स्ट्रॉ से ही दूध पीती हूँ, वही ठाट है, स्वैग है, एंड दैट्स हाउ शी स्टार्टेड ड्रिंकिंग दैट मिल्क। वो बड़े स्टाइल से उसको जब स्ट्रॉ दी गई, और वो थोड़ी मोटी जो है वो नाली टाइप चीज थी, सो ऑफकोर्स वो चीज जो है वो उसके मुंह में दी गई, और फिर उसके बाद उसने फटाफट एकदम जल्दी से उस दूध को जो है वो पी डाला। लेकिन उससे पहले वो पीने से मना कर रही थी, लोगों को लग सकता था कि इसको शायद भूख नहीं है, इसका पेट खराब है, या कोई भी रीजन हो सकता था, बट वो स्ट्रॉ मांग रही थी। अब ऑफकोर्स वो बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसके मालिक को समझ आ गया कि ये नहीं पिएगी, ये बेटी ऐसे नहीं पिएगी, ये स्ट्रॉ के साथ ही दूध पिएगी। जी हाँ, सो अगर आपको कभी ऐसा लगेगा कि आपके बच्चे बहुत नखरेबाज हैं, जो नए पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे बहुत नखरेबाज हैं, ऐसे नखरे करते हैं, वैसे नखरे करते हैं, तो ध्यान में रखिएगा कि ऐसे जानवर भी हैं जो कि ऐसे नखरे कर सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि ह्यूमंस ही नखरेबाज हैं, इवन एनिमल्स कैन बी नखरेबाज। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com।

गोल भी होगा, ग्रुप भी होगा और पीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूबॉल 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड पीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मॉर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisbane.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों मैंने प्रोग्राम में, जब हम मिडल में थे प्रोग्राम के, मैंने आपसे कहा था कि एक बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस का, पुरानी एक्ट्रेस का आज जन्मदिन है और मैंने आपको गेस करने के लिए कहा था कि किसका हो सकता है, आप गेस कीजिएगा। मैंने आपको हिंट भी दिया था कि हाँ, उनकी रिस्पेक्ट बड़े बड़े एक्टर्स करते हैं, उन्होंने सब बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है। शी इज वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेसेस ऑफ दैट एरा। जी हाँ, इससे मैंने आपको हिंट तो दे दिया था और इसके बाद आपने सोचा है इसके बारे में या नहीं सोचा है, कि आपने गेस किया है या नहीं किया है, अब वो बात की बात है, क्योंकि हम आपको सच में बताने वाले हैं एग्जैक्टली किसका जन्मदिन है आज। दोस्तों रिस्पेक्ट की बात सबसे ज्यादा ऊपर कहेंगे और एक और चीज कहेंगे। ऐसा कहा जाता है कि इस एक्ट्रेस ने कभी भी अपने अपने मॉरल्स के खिलाफ जाने की कोशिश नहीं की। मतलब जब उन्हें कहा भी गया, जैसे सबसे पहले एक एक्ट्रेस को अच्छा नाम चाहिए होता है और ऐसा नाम चाहिए होता है, कैची नाम चाहिए होता है, जिससे वो अपने ऑडियंस के साथ ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाए। जब इनको कहा गया कि इनको अपना नाम चेंज करना पड़ेगा तो इन्होंने मना कर दिया। जब इनको कहा गया कि इनको स्लीवलेस पहनना पड़ेगा या ऑफ शोल्डर पहनना पड़ेगा तो इन्होंने वो भी मना कर दिया। इन्होंने कहा कि मैं काम करने आई हूं, मैं एक्टिंग करूंगी लेकिन अपनी शर्तों पर और अपने मॉरल्स के खिलाफ जाए बिना। बात कर रहे हैं हम वहीदा रहमान जी की। जी हाँ, हर एक एक्टर इस फिल्म इंडस्ट्री का, हर एक एक्टर उनकी तारीफ करता है, उनकी रिस्पेक्ट करता है और उनके साथ काम करने के ख्वाब देखता आया है। जी हाँ, और वहीदा रहमान जी का जन्मदिन है आज। तो सबसे पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद उन्हें हमारी तरफ से, रेडियो ब्रिस्वानी की तरफ से। एंड इनको सेलिब्रेट तो हम करेंगे ही एक बहुत ही खूबसूरत गाने के साथ। And guess what? ये गाना मेरी तरफ से नहीं है, ये गाना इन्हीं की मूवी का है, लेकिन ये रिकमेंडेशन है हमारे बहुत ही खास लिसनर, तो हम नहीं कहेंगे, हमारे बॉस हैं, क्योंकि वो, जी हाँ, बहुत ही खास शख्सियत, हमारे बॉस मिस्टर जतीश पूरन जी की तरफ से ये जो रिकमेंडेशन आई है। और गाना जो है वो बहुत ही खूबसूरत है और मैं बात कर रही हूँ चौदहवीं का चांद उसकी। जी हाँ, चौदहवीं का चांद, क्या खूबसूरत गाना है, इसके बारे में मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम यही दुआ करेंगे कि आपके लिए साल बहुत खुशनुमा रहे, आप हेल्दी रहें, वेल्दी आप हो ही, और बहुत ही सुकून भरा ये साल आपके लिए रहे वहीदा जी। यही हमारी दुआ है, कामना है आपके लिए। और थैंक यू सो मच सर इस खूबसूरत सी रिकमेंडेशन के लिए, आपने कहीं ना कहीं थीम को पूरा कर दिया। आज वहीदा रहमान जी का जन्मदिन है और आपने गाना भी ऐसा रिकमेंड कर दिया जो उन्हीं का ही है।

चाहे अनचाहे आपने कर दिया है वही काम जो होना चाहिए था। थैंक यू सो मच। और मेरे बाकी लिसनर जल्दी से अपनी फरमाइशों के साथ आ जाओ, क्योंकि अभी नहीं तो कब। ये गाना अब मैं प्ले करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच सर ये खूबसूरत से गाने के लिए। एंड सुनते हैं इसको और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें।

0: जी दोस्तों, इस खूबसूरत गाने की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और डेफिनेटली गाना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन हाईलाइट तो रफी साहब की गायकी ही है। जी हाँ, मतलब प्योर रोमांस एंड वेलवेट लाइक सिंगिंग। जी हाँ, वेलवेट लाइक सिंगिंग। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये रिकमेंडेशन देने वाले कह रहे हैं। जी हाँ, और ये खूबसूरत सी बातें, मतलब कैसे रफी साहब की जो गायकी है, उनकी जो आवाज है, मतलब ऐसा लगता है कि किसी ने कुशन रख दिया है हमारे कानों के पास, है ना। मतलब वैसे सब फीलिंग आती है। सो रफी साहब की जो वॉइस है वो इतनी ज्यादा सॉफ्ट है, इतनी ग्रेसफुल है, इतनी ज्यादा एक्सप्रेसिव है इस गाने में कि इसके बारे में क्या ही बात की जाए। और ये गाना, मतलब अगर किसी को रोमांस की पहचान के बारे में किसी को कुछ कहना है तो मुझे लगता है दिस इज द परफेक्ट सॉन्ग। और अगर आप किसी को पटाना चाहते हो तो देन दिस इज द बेस्ट चॉइस, क्योंकि चांद से कंपैरिजन करवाना किसको पसंद नहीं है, चांद जैसा अपने आप को लगवाना किसको पसंद नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन बहुत ही खूबसूरत
1: फिल्मी गाने के नए वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें।

जी हाँ दोस्तों, वहीदा रहमान जी की बात करें तो ऑफ कोर्स गाइड फिल्म हम कैसे भूल सकते हैं। मतलब गाइड जो है वो इस दुनिया में, मतलब बॉलीवुड छोड़िए, दुनिया में अगर उसके सक्सेस की बात की जाए तो वो भी खतरनाक था, क्योंकि गाइड इतनी ज्यादा फेमस हो गई थी कि उसका एक इंग्लिश वर्जन भी बनाया गया था। ऑफ कोर्स जब उसका इंग्लिश वर्जन बनाया गया तो उसमें भी वहीदा रहमान जी और देव साहब को लिया गया। ऐसे कहा जाता है कि उसी दौरान, उसी की शूटिंग के दौरान एक किस्सा हुआ जो कि लिटरली वहीदा रहमान जी को आज भी याद होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत बाद तक उस किस्से को एक प्रोग्राम के दौरान, एक इंटरव्यू के दौरान भी शेयर किया था। उन्होंने कहा था कि गाइड के इंग्लिश वर्जन की शूटिंग हो रही थी और वहां पर जो डायरेक्टर थे वो उनको कहते हैं कि तुमको डांस करना है, और डांस वाला सीक्वेंस से तो वहीदा रहमान जी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो आगे की जो बात कहते हैं उसके बाद वहीदा रहमान जी लिटरली एकदम शांत हो जाती है और वो डायरेक्टर को बस देखती रहती है कि आप बोल क्या रहे हो। जी हाँ, वो वहीदा रहमान जी को कहते हैं कि तुमको डांस करना है और डांस करते करते तुमको सांप को किस करना है। जी हाँ, सांप को किस करना है। आप लोग बोलोगे कि ये क्या बात बनी, मतलब सांप को कोई कैसे किस कर सकता है, मतलब डायरेक्टर हिला हुआ था क्या। वेल वहीदा रहमान ऑफ कोर्स कभी भी अपनी चॉइसेस से वो जो है वो कभी भी जो है उन्होंने वो नहीं किया, उन्होंने नहीं मानी ऐसी बातें जो कि उनको लगता था कि वो गलत है। चाहे फिर जैसे मैंने पहले ही बताया कि वो शी वॉज वेरी ओपिनियनेटेड कि कैसे कपड़े जो है उन्हें पहनने चाहिए, कैसे जो है उन्हें अपना नाम जो है वो नहीं चेंज करना है, उनकी आइडेंटिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहां पर उन्होंने सीधा सीधा ये काम करने से मना कर दिया। उन्होंने डायरेक्टर को बोल दिया कि मुझे डांस सीक्वेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां पर सांप को किस में कैसे कर सकती हूं। जी हाँ, तो डायरेक्टर सामने से कहता है कि तुम भारतीय लड़की हो, तुम कुछ भी कर सकती हो। तो उन्होंने कहा कि भारतीय लड़की हूं मैं, तो मैं सांप को क्या किस कर सकती हूं, ये किसने कह दिया आपको। बट ऑफ कोर्स वो सीक्वेंस नहीं हुआ, उन्होंने सांप को किस वहां पर नहीं किया, एटलीस्ट उन्होंने रियल सांप को किस वहां पर नहीं किया। लेकिन ये चीज अगर किसी और एक्ट्रेस ने फेस की होती तो शायद वो कहीं ना कहीं मजबूर भी हो जाती ये करने के लिए, पर वहीदा रहमान ने सीधा सीधा कह दिया कि आप क्या करवा रहे हो और जो भी करवा रहे हो वो मैं नहीं करूंगी। ऐसी ओपिनियनेटेड हीरोइन वहीदा रहमान जी का नाम उनमें सबसे ऊपर आता है, क्योंकि बहुत सारी एक्ट्रेसेस, बहुत बड़ी एक्ट्रेसेस थी, हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस की कैटेगरी में थी, बट फिर भी उनको कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ जाती थी जो कि उनको डायरेक्टर या प्रोड्यूसर्स कहते थे। बट वहीदा रहमान जी ने हमेशा कहा है कि जो सही है वो मैं करूंगी और जो मुझे लगेगा गलत है वो मैं कभी भी नहीं करूंगी। अगेन, आज उनके जन्मदिन के दिन हम उनकी ओपिनियंस को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बताया है कि उस एरा में भी औरतें ओपिनियनेटेड हो सकती थी। जी हाँ, यहाँ पर आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपसे कल, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिजवानी 107.1 AM। हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए। और ये लास्ट सॉन्ग आप सबके लिए, एग्जैक्टली ये लास्ट सॉन्ग नहीं है लेकिन ये सेकेंड लास्ट है, और ये खूबसूरत सा गाना है छू लेने दो नाजुक होंठों को। आई डोंट नो, आई जस्ट कीप कमिंग बैक टू दिस सॉन्ग एंड गेस व्हाट, ये गाना सबसे पहले मैंने खुद नहीं सुना था, मैं इसके बारे में भी नहीं थी, मेरे लिसनर्स ने इसे फरमाइश किया था और तब मुझे पता चला था ये गाना आप सबके लिए। बाय, सी यू, टाटा, मिलते हैं अब आपसे कल।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव के सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।
1: कहते हैं शादी के बाद मोहब्बत हो ही जाती है,

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। NRL मैजिक राउंड का आगाज, आज से ब्रिस्बेन में रग्बी लीग का सबसे बड़ा फेस्टिवल मैजिक राउंड शुरू हो रहा है। सनकॉर्प स्टेडियम में अगले 4 दिन तक रग्बी का जादू छाया रहेगा। वहीं वुमेन्स स्टेट ऑफ ओरिजिन आज रात ब्रिस्बेन के सनकॉर्प स्टेडियम में क्वींसलैंड मरून्स एंड न्यू साउथ वेल्स ब्लूज के बीच महिलाओं का स्टेट ऑफ ओरिजिन मैच खेला जाएगा। पूरा शहर इस बड़े मुकाबले के लिए उत्साहित है। वहीं द लॉन्ग रोल का सम्मान, 1000 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद नेशनल बाउल्स रिले आज ब्रिस्बेन के विंडसर बाउल्स क्लब पहुंचेगी। इसका मकसद 2032 ओलंपिक्स के लिए बाउल्स खेल को प्रमोट करना है। वहीं ब्रिस्बेन बुलेट्स का नया साइनिंग, बास्केटबॉल की दुनिया में खबर है कि ब्रिस्बेन बुलेट्स ने युवा टैलेंट हैरी रूलिया डेफ को कई सालों के लिए साइन कर लिया है। टीम को उम्मीद है कि इससे उनकी डिफेंस मजबूत होगी। वहीं पनियरी ग्रीक फेस्टिवल की तैयारी, ब्रिस्बेन का मशहूर ग्रीक फेस्टिवल पनियरी अपनी 50वीं सालगिरह मनाने के लिए तैयार है। मस्क्रेब पार्क में अगले हफ्ते होने वाले इस आयोजन के लिए आज से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसी के साथ ट्रैफिक अलर्ट, मैजिक राउंड और सनकॉर्प स्टेडियम में होने वाले मैचों की वजह से ब्रिस्बेन के सीबीडी और मिल्टन एरिया में आज शाम को भारी ट्रैफिक रहने वाला है। बस और ट्रेन का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा भारत के कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले सीबीआई डायरेक्टर को मिला एक्सटेंशन। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सीबीआई के डायरेक्टर प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। अब वो 24 मई 2026 के बाद भी अपने पद पर बने रहेंगे। वहीं नीट परीक्षा में बड़े बदलाव की तैयारी, राधाकृष्णन कमेटी ने अपनी ताजा रिपोर्ट सौंप दी है। अब नीट की परीक्षा पेन पेपर के बजाय हाइब्रिड मोड यानी कि कंप्यूटर पर कराने की सलाह दी गई है। इसी के साथ केरल को मिलेगा नया मुख्यमंत्री। कांग्रेस पार्टी आज केरल के अगले मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर सकती है। राहुल गांधी और मल्लिका अर्जुन खड़गे के बीच हुई 40 मिनट की लंबी मीटिंग के बाद अब सबकी नजरें आज होने वाले आधिकारिक ऐलान पर हैं। वहीं कोलकाता हाई कोर्ट में ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज एक अलग अंदाज में नजर आई। वो वकील की ड्रेस पहनकर खुद एक केस की पैरवी करने कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची। इसी के साथ महाराष्ट्र में पेपर लीक गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि ये गिरोह छात्रों को भारी रकम के बदले लीक हुए पेपर बेचता था। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात। बीजिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई। ट्रंप ने कहा कि दोनों देश अपने मतभेदों को सुलझाने की दिशा में काम कर रहे हैं। वहीं ईरान का नया शिपिंग प्रोटोकॉल, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए नए नियम बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। अब वहां से गुजरने वाले अंतर्राष्ट्रीय जहाजों को सुरक्षा के बदले फीस देनी पड़ सकती है। वहीं अमेरिका के सेंट्रल बैंक को मिला नया बॉस। अमेरिकी सीनेट ने केविन वॉश को फेडरल रिजर्व का नया चेयरपर्सन चुन लिया है। वो जेरोम पावेल की जगह लेंगे और अब सबकी नजरें ब्याज दरों पर उनके फैसलों पर होंगी। वहीं फिलीपींस की संसद में फायरिंग। फिलीपींस की सीनेट के बाहर आज गोली चलने की आवाज सुनाई दी। वहां एक सीनेटर को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के वारंट के बाद सुरक्षा हिरासत में रखा गया, जिसके बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसी के साथ यूके में विरोध प्रदर्शन पर चेतावनी। यूनाइटेड नेशंस ने ब्रिटेन को चेतावनी दी है कि वो फिलिस्तीन के समर्थन में होने वाले शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को ना रोके। यूएन के मुताबिक नए कानून लोकतांत्रिक आजादी के खिलाफ हो सकते हैं। वहीं ग्लोबल मार्केट में हलचल। वॉल स्ट्रीट के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद आज एशियाई बाजारों में भी रौनक है। जापान का निक्केई और भारत का सेंसेक्स आज सुबह अच्छी बढ़त के साथ खुले हैं। ऐसे के साथ अब जरा चलते हैं सीधा खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले विराट कोहली का ऐतिहासिक 9वां शतक। कल रात रायपुर में खेले गए मैच में विराट कोहली ने आईपीएल का अपना 9वां शतक जड़कर इतिहास रच दिया। इसी के साथ थाईलैंड ओपन बैडमिंटन, भारत के स्टार शटलर पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत ने अपने अपने मैच जीतकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। वहीं वेटलिफ्टिंग में सिल्वर और ब्रॉन्ज, एशियन सीनियर चैंपियनशिप में भारत की ज्ञानेश्वरी यादव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। वहीं महिला बॉक्सिंग में भारत का दबदबा, ताशकंद में चल रही एशियन अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत की कई मुक्केबाजी सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। वहीं फुटबॉल अपडेट, एएफसी अंडर 17 महिला एशियन कप के क्वार्टर फाइनल में भारत का सामना मेजबान चीन से हो रहा है। पूरे देश की दुआएं हमारी यंग ब्लू टाइगर्स के साथ हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपसे कल। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।
1: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajj hi contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
4: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
3: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
4: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
5: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
6: Anuj, कोई अच्छा सा lawyer suggest करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
7: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
6: अरे वाह, इनका पता बताना।
7: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: हाय, दिस इज अमिताभ बच्चन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय गाइस, आई एम मनमीत फ्रॉम द मीत ब्रदर्स एंड आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani
8: से. To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी advice है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज एंड associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks Atanya, I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया.
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें.
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं. ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से. और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं.
2: मुझे तो पता ही नहीं था. अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो.
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस. और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर. याद रहे 0400-644-35 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर.
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है.
6: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं. आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है. इसे हम बिन कॉइन कहते हैं. अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें. आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है. बैंक में डालें, ना कि कूड़ेदान में. अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani-creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

गोल भी होगा, ग्रुप भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूब ऑफ 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मॉर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर कटेशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फीजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फीजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisbane.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
2: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उहनां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उत्ते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
3: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
4: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं, दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
3: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
4: At Shop 9B, Sunnybank Hills Shopping Town, corner of Kurlum and 661 Crompton Road, Sunnybank Hills, Queensland 4109. For all your jewelry needs, contact 3273-7365. That's 3273-7365. Or email princejewelers@bigpond.com. Family business built on trust.
5: हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव के सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स। पर लड़की किसी में नहीं मिलती है, ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

हां जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101.1 ते चार चे संदेश शौक दे नाल तुसीं बने होए। देखो आमिर खान दी जे गल करिए ना तां आमिर खान प्रोडक्शन दे बैनर तले बनिया हालिया रिलीज फिल्मां दा की हाल होया हैगा उस बारे मेरा मन सीगा कि सोच गल करां थोड़े नाल। फिल्मां हैगियां ने रिलीज होईयां कुछ हिट होईयां कुछ डिजास्टर भी साबित होईयां हैगियां ने ते मेरे को एक लिस्ट हैगी है छोटी जी सोचा थोड़े नाल शेयर कर लेनी है क्योंकि आमिर खान की खुद दियां फिल्मां पिछले कुछ सालों तो बॉक्स ऑफिस से ठीक ठाक चकमाली कर चुकिया हैगियां ने। प्रोडक्शन हाउस की जो गल करिए तो उन्हों का थोड़ा जा हाल हैगा जिहड़ा वह नीचे है। किहड़ियां-किहड़ियां फिल्मां इस लिस्ट विच शामिल ने की कुछ हैगा आमिर खान प्रोडक्शन फिल्मस का हाल दस दिए उन्होंने बारे एक एक करके पहला सुनो एक गीत।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेंबर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेंबर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: Hi, this is Amitabh Bachchan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani।

हां जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 101.1 FM ते जी आरचे संदेश अलग दिन से बने हुए। अगली जड़ी में फिल्म की गल कर जा रही है पर वो डिजास्टर नहीं है, वो है जी बहुत ज्यादा शानदार फिल्म। फिल्म का नाम है जी लापता लेडीज। लापता लेडीज है ना जो किरण राव वालों निर्देशित है। किरण राव आमिर खान की एक्स वाइफ 2024 कॉमेडी ड्रामा फिल्म आई। फिल्म का निर्माण राव आमिर खान जो ज्योति देशपांडे ने किया है। इस विच नितांशी गोयल प्रतिभा रांता स्पर्श श्रीवास्तव छाया कदम ते रवि किशन लीड रोल। फिल्म ना रविंद्रनाथ ठाकुर दे 1906

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.

0: तुम्हारे साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400644 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
5: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
4: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
5: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
4: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उहनां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वेबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
2: सम नंबर्स कैरी वेट बियॉन्ड व्हाट यू से। Q11700, द मास्टर नंबर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन, अ हेरिटेज क्वींसलैंड प्लेट, फर्स्ट इश्यूड इन 1922, अ पीस ऑफ क्वींसलैंड हिस्ट्री विद फुल प्रोविनेंस, ओन्ड आउटराइट, ट्रांसफर रेडी। For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q-Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
0: Containers for Change के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धन राशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
3: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

हां जी जी अनु जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी वंसन वाने ते जी अच्छे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। इस बाद अगला नाम आता है जी फिल्म एक दिन दा। हाल फिलहाल चा रिलीज़ हुई है आमिर खान प्रोडक्शन की, थोड़े ही दिन हुए हैं ते बॉक्स ऑफिस से तो हाल है जरा बुरा हाल ही हो गया। जुनैद खान है आमिर खान के मुंडे इसलिए लीड रोल दे इस फिल्म दे ते इन्होंने साउथ सुपरस्टार सई पल्लवी नु कास्ट किया जो कि बहुत ज्यादा शानदार एक्ट्रेस है। पर फिल्म का बजट 15 करोड़ है, बहुत ज्यादा तो नहीं पर फिर भी इन्ना भी नहीं पूरा कर सकी क्योंकि ज्यादा फैंस पसंद नहीं आ रही। बाकी तुसी देख ली हैगी है तो तुसी दसो इसका रिव्यू दो।

भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूबॉल 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मॉर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फीजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फीजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisbane.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो, जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उहनां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
2: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहां से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
3: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहां अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
2: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
3: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
4: हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव के सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Yaar, sab theek hai. Bas mummy papa India mein akela feel karte hain. Unorganized helpers pe bharosa bhi nahi hota. Kal ko emergency ho jaye to?
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल। ओम्स और असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओमजोग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओमजोग असिस्टेड लिविंग, जहाँ केयर का मतलब है रियल केयर।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे, ओमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
3: Hi, this is Amitabh Bachchan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
9: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
10: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
11: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया

0: हुआ देसी घी ले सकते हो।
1: हुआ देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
2: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें न कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। प्री सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

भी होगा, ग्रुप भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूब ऑफ 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मॉर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फीजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फीजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisbane.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: नहीं, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: ऐ मेरी हमरथ, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

사이드 뉴스를 듣고

0: बाकी से जो पर सो कर झूठे को आराम न आए, लेकिन सच्चे को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए।
1: ऐ दोस्त, ऐ दोस्त, ऐ दोस्त।

बढ़कर उसका साथ दिया, गिरते को यहाँ किसने थामा, किसने उसको हार दिया। ए दोस्त ए दोस्त ए

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव के सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di intricacies nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Yaar, sab theek hai. Bas mummy papa India mein akela feel karte hain. Unorganized helpers pe bharosa bhi nahi hota. Kal ko emergency ho jaye to?
3: तूने ओम्स ओर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल, ओम्स ओर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ओर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ओर्ग असिस्टेड लिविंग, जहाँ केयर का मतलब है रियल केयर।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

ना बदला मैं, ना बदला वो।

पहले था कबूतर अब है ट्विटर, पहले थी बुक अब है फेसबुक, पहले था टेलीग्राम अब है इंस्टाग्राम, पहले थी जादू की जापी अब है वीडियो कॉल पे पप्पी। यही सोचकर पिछला और अगला

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: Hi, this is Amitabh Bachchan.
3: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi, this is Salman Khan.
6: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
9: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
10: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
11: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani।

जान पहचान हो, जीना आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख ना चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो।

आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख ना चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

राम कहो वो रहीम कहे, दोनों की गरज भगवान से है। तुम ईसा कहो वो वाहे गुरु, हम सब की अरज अल्लाह से है। कितनी सच बात है ना दोस्तों, हम सब अलग अलग धर्मों में बटे हुए हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले हैं। लेकिन आप चाहे किसी भी धर्म को मानते हो, उस धर्म को मानने के पीछे है एक ही मकसद, अपनी प्रार्थना को उस शक्ति तक पहुंचाना जो हमारे हिसाब से इस संसार का निर्माण कर रही है, उसे चला रही है। और उसी शक्ति की, उसी सर्वशक्तिमान की हम प्रार्थना करते हैं हर सुबह अलग अलग धर्मों के हिसाब से, अलग अलग नामों से। लेकिन नाम चाहे कुछ भी दे दीजिए, आपकी प्रार्थना एक ही है उस शक्ति से है जो ये दुनिया चला रही है, और उसी शक्ति को समर्पित है यह अगला गाना। सुनते रहिए जीवन आधार सताक्षी के साथ।

जीवन आधार रेडियो ब्रह्मानी पर सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं और इस आधार में, जीवन के आधार में हम अपने ही जीवन को ढूंढने की आज इस नई सुबह एक कोशिश कर रहे हैं। आगे ये कोशिश जारी रहेगी। हमें सुनते रहिए और सुनते रहिए रेडियो ब्रह्मानी 1701 AM।

जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही। रेडियो प्रसवानी 1701 AM पर श्रोताओं आप सुन रहे हैं जीवन आधार, और इस सफर में आज से हर रोज आपकी हम सफर सताक्षी आपका साथ निभाती रहेगी। जब तक आप उस ईश्वर को मैं के साथ जोड़ते हैं, जब तक आप में मैं जिंदा रहता है, आप कितनी भी कोशिश कर लें उस शक्ति को पा नहीं सकते, और कितना भी आप दुआ मांग लें, आप प्रार्थना कर लें, आप अरदास लगा लें, लेकिन आप अपनी आवाज उस तक पहुंचा नहीं सकते हैं। उसकी आवाज सुनने का और अपनी आवाज उस तक पहुंचाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही माध्यम है, अपने मैं को मिटा देना। तो मिटा दीजिए अपने मैं को और ढूंढ लीजिए उस सर्वशक्तिमान को। सुनते रहिए जीवन आधार सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी पर।

रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM पर जीवन का आधार जीवन आधार आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ और हम इस जीवन आधार के माध्यम से जीवन के ही सत्य को जानने की कोशिश कर रहे हैं। आइए गुरुवाणी के साथ बढ़ते हैं हमारे सफर में आगे। सुनते रहिए जीवन आधार और यूं ही रहिए रेडियो ब्रिस्वानी पर हमारे साथ।

ओंकार सतनाम करता पुरख अकाल मूरत अजुनी सभम। गुरु प्रसाद जप आड़ सच जुगाड़ सच है भी सच नानक होसे भी सच। सोचे सोचे ना होवे जो सोची लाख बार छुपे छुप ना होवे। यानी एक ही ईश्वर है और उसी का नाम सच है। वही सबको बनाने वाला है। उसकी कोई मूरत नहीं है। वो किसी का दुश्मन नहीं है। जन्म मरण से दूर है और अपनी सत्ता कायम रखने वाला है। ऐसे ही परमात्मा को गुरु नानक जी ने अकाल पुरख कहा है, जिसकी शरण में गुरु के बिना जाना संभव नहीं है। आइए उसी ईश्वर को नमन करते हैं और सुनते हैं ये अगला गीत।

श्रोताओं, ये था आज हमारा आपका आज की सुबह साथ। कल इसी साथ को लेकर आगे भी साथ साथ चलेंगे। और अपना जो रिश्ता है वो ईश्वर से जोड़े रखिए, उस शक्ति को जिसमें भी आप जिस भी नाम से माने विश्वास करते रहिए, क्योंकि वही है जिसने आपको थामा है, आपके अपनों को थामा है। नमस्कार।

हेलो जी, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल जी, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी, आपके अपने दोस्त और होस्ट आरजे जानी जैन के साथ आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसवानी में। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और यहाँ पर जाने का सफर प्रोग्राम शुरू हो चुका है, जिस सफर में हमेशा हम बहुत सारी बातें करते हैं जो हमारे हित के लिए होती है, हमारे लाभ के लिए होते हैं, जिससे हमें फायदा ही पहुंचता है। तो आज भी बहुत सी बातें आज आप सभी के बीच साझा करेंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए मेरे साथ ओनली ऑन रेडियो ब्रिसवानी।

रेडियो प्रिस्वानी में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए इसी के चलते करते हैं जाने के सफर प्रोग्राम को शुरू, और इस सफर में सबसे पहले बात करते हैं कुछ खबरों की। डच जहाज एमवी हडियस पर सोमवार को हंता वायरस के मामले सामने आने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक स्वास्थ्य जोखिम को कम बताया है। चूहों से फैलने वाली इस संक्रमण से जहाज पर 3 यात्रियों की मौत हो गई। विशेषज्ञों के अनुसार ये कोविड की तरह नहीं फैलता और फिलहाल इसकी कोई भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। दुनिया के कई देशों में ये हंता वायरस तेजी से फैलकर हाहाकार मचा रहा है। आइए इसी के साथ सुनते हैं अगला गीत।

आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी, आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, जानते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशों में ईंधन की बचत की अपील के बीच भारत के खास दोस्त रूस से एक अच्छी खबर सामने आई है। रूस के विदेश मंत्री संग्रेही लावरोव ने भारत दौरे से पहले एक इंटरव्यू में कहा कि ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ी सभी समझौतों को हर हाल में पूरा किया जाएगा। लावरोव ने कहा है कि रूस ये सुनिश्चित करेगा कि भारत के हितों को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे। भारत और रूस के संबंधों पर बात करते हुए रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते बहुत ही मजबूत और खास है और ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं हो सकती जिसमें दोनों देशों के रास्ते अलग हो जाएं। उन्होंने ये भी कहा है कि ऊर्जा आपूर्ति के मामले में रूस ने कभी भी भारत के प्रति अपने दायित्वों को कम नहीं आंका है। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी, आईएसए के साथ बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं अगला गीत।

आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे अगली खबर की ओर। बीजिंग में राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच शिखर वार्ता हुई है। ट्रंप ने जिनपिंग की प्रशंसा की, लेकिन चीनी राष्ट्रपति ने ताइवान को लाल रेखा बताते हुए हथियारों की बिक्री पर सख्त चेतावनी दी है। जिनपिंग के अनुसार इस मुद्दे को गलत तरीके से संभालने पर दोनों देशों के बीच सीधा टकराव हो सकता है। बैठक में रूपये 9 लाख करोड़ की बोइंग डील और ईरान संकट पर भी चर्चा हुई है। आइए इसके साथ सुनते हैं अगला गीत।

आप सब सुन रहे हैं रेडियो बिस्वानी। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और कुछ स्किन की कुछ टिप्स जान लेते हैं। दोस्तों, आजकल जो है रिंकल्स झुर्रियां आम चीज हो गई है। इसे मिटाने के लिए लोग बहुत ही महंगी महंगी क्रीम्स जो है वो यूज करते हैं। इससे क्या होता है, क्रीम यूज करने से हमारे स्किन का जो बैरियर है वो भी डैमेज हो जाता है और असर भी नहीं पड़ता। सबसे अच्छा तरीका है झुर्रियों को खत्म करने के लिए आप फेस की एक्सरसाइज जरूर करें, फेस योगा जरूर करें। आप उसको यूट्यूब में देख सकते हैं और उस योगा के हेल्प से आप अपने स्किन के जितने भी रिंकल्स हैं, झुर्रियां हैं, डार्क सर्कल्स हैं, ये आप मिटा सकते हैं। लेकिन इसे ठीक करने के लिए और भी घरेलू चीजें हैं जिसे आप यूज कर अपने घर पर बैठे ही उस रेमेडी को इस्तेमाल करके ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, झुर्रियों को मिटाने के लिए आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने दो चुटकी फिटकरी लेनी है, उसको आप चाहे एलोवेरा जेल में मिला सकते हैं, चाहे वो आप दही में मिला के लगा सकते हैं, चाहे आप रोज वाटर में लगा सकते हैं। उसको डिप करके आप अपने रिंकल्स वाले एरिया में आप हल्का हल्का सा जरूर लगाएं। और आपको याद रखना है कि हफ्ते में सिर्फ ये आपने तरीका दो बार ही करना है। सबसे ज्यादा अगर आप इस्तेमाल फिटकरी को अपने फेस में करते हैं तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो इसको सिर्फ दो बार ही लगाएं हफ्ते में और आप धीरे धीरे रिजल्ट देखेंगे। दो और तीन वीक के अंदर ही आपको फर्क नजर आएगा, क्योंकि जो फिटकरी है वो हमारे स्किन के जो पोर्स है उसको भी टाइट करती है और हमारे स्किन को टाइट करती है, जिससे कि रिंकल्स की प्रॉब्लम बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। अगर आप ऐसे रूटीन में लेकर आएंगे, यानी डेली आपने नहीं लगाना है, हफ्ते में सिर्फ दो बार लगाना है और उसके बाद आप खुद ही रिजल्ट देखेंगे। तो ये था आज का बहुत ही प्यारा स्किन टिप जो मैंने आप सभी को बताया है और आशा करती हूँ ये अच्छा लगा होगा। तो आइए इसी के साथ सुनते हैं अगला गीत।

आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी, आपके अपने दोस्त और होस्ट आरजी जानी जैन के साथ जानने के सफर प्रोग्राम में। आशा करती हूँ आज आप सभी ने समाचार की जानकारी प्राप्त की है और साथ ही साथ हमने आज रिंकल्स के बारे में बहुत ही अच्छी रेमेडी जानी है, जो अगर आप करेंगे तो आपको असर जरूर दिखेगा। ऐसे ही चीजों को जानने के लिए आप सभी बने रहिए अपने दोस्त आरजे जानी जैन के साथ रेडियो ब्रिसवानी में। ये प्रोग्राम जो है हर मंडे टू फ्राइडे आता है, मॉर्निंग में आप इस प्रोग्राम का आनंद ले सकते हैं। तो अभी के लिए अब मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो ब्रिसवानी।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: आया क्या?
5: आएगा।

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो बुरुस्तानी 1701 एम। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। हॉर्मुज के पास गुजरात के एक और जहाज पर हमला, समुद्र में डूबा हाजी अली, सभी 14 क्रू मेंबर्स सुरक्षित। मिडिल ईस्ट में जारी तनातनी के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट से सटे ओमान तट पर गुजरात का एक और मालवाहक जहाज डूब गया। हाजी अली नाम का जहाज 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र से गुजर रहा था। इस दौरान उस पर ड्रोन या मिसाइल जैसा हथियार से हमला किया गया। हमले के बाद जहाज में आग लग गई। हालांकि ओमान कोस्ट गार्ड ने सभी 14 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बचा लिया है। चीन पहुंचते ही ट्रंप टीम पर लगा डिजिटल लॉकडाउन, अमेरिकी अधिकारियों ने छोड़े पर्सनल फोन लैपटॉप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीजिंग दौरे के दौरान उनकी टीम को कड़ी डिजिटल सुरक्षा व्यवस्था के बीच काम करना पड़ा। ट्रंप के साथ अमेरिका की कई बड़ी टेक और कारोबारी कंपनियों के प्रमुख भी चीन पहुंचे, लेकिन इस दौरे में साइबर जासूसी और डेटा सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता बनी रही। ट्रंप के साथ एनवीडिया के प्रमुख जेनसन हुआंग, एप्पल के प्रमुख टिम कुक, टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क, ब्लैक रॉक के लैरी फ्रिंक समेत मेटा, वीजा, जेपी मॉर्गन, बोइंग और कारगिल जैसी कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार, टेक्नोलॉजी और निवेश को लेकर चल रही बातचीत के बीच ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। आइए जुड़ते हैं अब भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। बंगाल कोई बुलडोजर स्टेट नहीं, हाईकोर्ट पहुंची ममता के खिलाफ लगे चोर के नारे, हुई धक्का मुक्की। बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट परिसर में भारी विरोध और नारेबाजी का सामना करना पड़ा। चुनाव के बाद हुई कथित हिंसा से संबंधित एक मामले में पैरवी करने पहुंची ममता बनर्जी जब कोर्ट रूम से बाहर निकल रही थी, तब वकीलों के एक समूह ने उन्हें घेर लिया और उनके खिलाफ चोर चोर के नारे लगाए। टुकड़ों में नहीं हो सकती शांति स्थापित, ब्रिक्स बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एकतरफा प्रतिबंध पर उठाए सवाल। ब्रिक्स संगठन की अगुवाई कर रहे भारत ने इसके विदेश मंत्रियों की बैठक के पहले दिन सभी सदस्य देशों की चिंताओं को आवाज देने की कोशिश की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और इसकी वजह से ऊर्जा आपूर्ति व सप्लाई चेन में हो रही बाधाओं के साथ ही दो टूक कहा कि न तो स्थिरता चुनिंदा हो सकती है और न ही टुकड़ों में शांति स्थापित की जा सकती है। ब्रिक्स के कुछ एजेंडे पर भ्रकुटियां तानने वाले अमेरिका पर भी जयशंकर ने निशाना साधा और संयुक्त राष्ट्र के प्रावधानों को नजरअंदाज कर दूसरे देशों पर प्रतिबंध लगाने जैसे कदमों की आलोचना की। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो बुरुस्तानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नीलम का प्यार भरा नमस्कार दोस्तों. 4 मिनट हो गए हैं 7 बजकर और हमारे साथ आप जुड़ गए हैं सुबह का सफर में. अभी से लेकर 9 बजे तक हमारे एक खूबसूरत साथ होने वाला है. हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत करते हैं आपका. आज फ्राइडे है 15 मई की सुबह, भीगी भीगी सी सुबह. कहना चाहेंगे अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड अ हैप्पी हैप्पी फ्राइडे. दोस्तों आशा है कि आप ठीक हैं और आज के लिए पूरे दिल से तैयार है. वैसे विश करना चाहेंगे कि आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा गुजरे. चलिए शुरू करते हैं आज की सुबह.

नमस्ते, सुबह का सफर में आप शामिल हैं। मैं हूं आपके साथ ही नीलम और आप जुड़े हुए हैं रेडियो ब्रिजवानी पर। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज फोरकास्ट में क्या बताया गया है। ब्रिस्बेन के लिए 16 डिग्रीज अभी है और मोस्टली क्लाउडी डे बताया गया है आज के लिए। टॉप्स रहेंगे 23, 70% चांस रेन बताया गया है आज के लिए। और सैटरडे को बताया गया है क्लाउडी डे रहेगा। संडे को 65% चांस रेन बताया गया है। मेलबर्न के लिए 10 डिग्रीज अभी है, मोस्टली क्लियर रहेगा आज। 23 डिग्रीज टॉप्स रहेंगे। और कैनबरा के लिए 10 डिग्रीज अभी है, मोस्टली सनी डे रहेगा, टॉप्स रहेंगे 18। सिडनी के लिए 14 डिग्रीज अभी है, पार्टी क्लाउडी डे, टॉप्स रहेंगे 21। कोस्ट के लिए बताया गया है 17 डिग्रीज अभी है, मोस्टली क्लाउडी डे रहेगा। और 90% चांस रेन का बताया गया है गो कोस्ट के लिए, टॉप्स रहेंगे 23। और सनशाइन कोस्ट के लिए बताया गया है 19 डिग्रीज, क्लाउडी डे रहेगा, टॉप्स रहेंगे 22। 50% चांस ऑफ रेन आज रहेगा गो कोस्ट में, सॉरी सनशाइन कोस्ट में। वैसे वेदर बारिश हफ्ते से हो रही है, अच्छी बात है, एंजॉय कर रहे हैं आप आई एम श्योर। और रास्ते पर इंसिडेंट्स भी हो रहे हैं तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा रास्ते पर आप सफर कर रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं सुबह का सफर में। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिजवानी, आपकी अपनी पहचान।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: वैसे सुबह का सफर में आगे बढ़ते हैं। वैसे ऐसा होता है जिंदगी में कि हम हमेशा दूसरों को देखकर अपने आप को कंपेयर करते हैं और नकल भी करते हैं और ट्राई करते हैं कि ये पर्सन ऐसा करता है तो ऐसा होता है। लेकिन दोस्तों, एवरीवन इज डिफरेंट, सभी का जो लाइफ सिचुएशन है डिफरेंट है, सोचने की भी जो टेक्निक है, आदत है, वो भी अलग है, सपोर्ट सिस्टम भी अलग है, किस तरह से एक पर्सन को सपोर्ट मिलता है फैमिली से, बाहर से, ये भी अलग है, तो पूरा सब कुछ। तो अगर आप सोचते हैं कि ऐसा होता आप कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, तो ना करें, क्योंकि ऐसा है कि जो जिंदगी है, जिंदगी का जो आई वुड से पेपर है, सभी का जो अलग अलग है, यू नो, तो किसी की नकल ना करें। योर पेपर इज डिफरेंट, सो ये आपका जो टेस्ट है वो अलग है, एंड अगर आप कॉपी करेंगे तो ऐसा ही रिजल्ट नहीं आएगा जैसा आप सोच रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो इसके बारे में ज़रूर सोचेगा। और फिर द थिंग इज, उसमें ओरिजिनलिटी भी नहीं है और फिर डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगा। तो ये थिंक अबाउट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ अभी जुड़े हैं, स्वागत करते हैं आपका सुबह का सफर में, शामिल है आप, मैं हूँ आपके साथ ही नीलम, ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से आपको।

तो बहुत ही खूबसूरत से गीत आप सुन रहे थे और आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में. आज अपना बर्थडे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं तो विश करना चाहेंगे अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू और ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से. और एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं आज, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेस फॉर दिस ब्यूटिफुल डे इन योर लाइफ. और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं.

दोस्तों एक खूबसूरत दिन को सलाम, आपके साथ को सलाम। और चलिए आगे बढ़ते हैं सुबह का सफर में। वैसे हमारे हाथ एक आर्टिकल लगा, तो चलो शेयर करते हैं आपके साथ। वैसे कहते हैं, सम पीपल वर नेवर टॉट दैट रेस्ट इज नॉर्मल, दे वर टॉट दैट देयर वर्थ डिपेंडेंट ऑन हाउ यूजफुल, प्रोडक्टिव, क्वाइट और सक्सेसफुल दे कुड बी फॉर अदर्स। सो इवन वाइल रेस्टिंग देयर नर्वस सिस्टम फील्स अनसेफ, नॉट बिकॉज दे आर लेजी, बिकॉज स्लोइंग डाउन वंस मेंट डिसअपॉइंटमेंट, क्रिटिसिज्म और विड्रॉल ऑफ लव। तो रिसर्च शो करता है कि पीपल हु फील गिल्टी फॉर रेस्टिंग ग्रीव अप इन अ एनवायरमेंट वेयर लव वॉज कंडीशनल, इट वॉज अनकंडीशनल। सो यू वेरंट थॉट दैट रेस्ट इज हेल्थी, यू वेर थॉट दैट रेस्ट हैड टू बी अर्नड। लव केम आफ्टर गुड ग्रेड्स और बींग यूजफुल और बींग क्वाइट, बींग स्ट्रांग, नॉट बींग अ बर्डन। सो ए नर्वस सिस्टम लर्नड वर्थ इक्वल्स प्रोडक्टिविटी। So, that's why doing nothing now feels uncomfortable, अभी बड़े पर भी, you know, even when you're exhausted, your body rests, your mind panics. This is not laziness, this is survival wiring. Your brain still believes, if I stop, I'll lose love, safety, or approval. Healthy environments teach you are allowed to rest. You are loved without output. You don't have to perform to belong. Unhealthy ones teach the opposite. Healing looks like this: resting without explaining yourself, resting without guilt, resting without proving you deserve it. तो दोस्तों, this is कुछ लोगों के लिए resonate करता होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आप घर पे हो, आप रेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर वो एक लिटिल वन सेज कि आई थिंक यू नीड टू डू दिस, आई थिंक यू नीड टू डू दैट, इफ ये नहीं होगा तो ये ऐसा हो जाएगा, यू नो। एंड तो अगर ड्यूरिंग दैट रेस्ट पीरियड जब आप ले भी रहे हो, आप फील कर रहे हो यू आर नॉट वर्थी ऑफ इट, ये अभी का नहीं है, ये छोटे का जो होता है। कभी कभी ऐसे एनवायरनमेंट में हम बड़े होते हैं जहाँ पर वी आर थॉट दैट वे, यू नो, अगर चुप रहना है या फिर ओबे करना है या फिर तो ही आपको वो एक्स्ट्रा अटेंशन या लव मिलता था। ऐसा नहीं है कि आपको लव नहीं मिलता था, बट इन दैट वे। और शायद ऐसा भी हो कि आपका सोचने का उस टाइप पर उस तरीका था एंड ये मन में बैठ गया है, तो भी बड़े पर भी ऐसा आप कर रहे हैं। तो दोस्तों, बच्चे घर पर हैं एंड टीच देम कि अगर आप रेस्ट कर रहे हो, इट डजंट मीन कि यू नो कि यू हैव टू डू समथिंग गुड टू रेस्ट। प्रोडक्टिविटी ऐसा नहीं है कि कोई प्रोडक्टिविटी आप ही करो तो ही आप रेस्ट कर सकते हो, यू नो, रेस्ट जिसको करना है वो करे। तो अगर अभी बड़े पर ऐसा फीलिंग आ रहा है, देन अपने आप को, अपने मन को शांत रखने की कोशिश करें, बिकॉज एवरी वन डिजर्व्स टू हैव दैट रेस्ट, दैट रेस्टफुल टाइम एंड दैट पीरियड जहां पर आप अपने आप से एंजॉय कर सके। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल सीईसी अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: दोस्तों, कहते हैं कि हर किसी के भीतर एक कुरुक्षेत्र है, जहां रिश्ते, इच्छाएं और कर्तव्य हर रोज टकराते हैं। और जब सब कुछ धुंधला लगे, तब कोई कृष्णा भीतर से कहता है, तू बस अपना धर्म निभा, फल मैं तय करूंगा। खूबसूरत, राइट? आई नो, इट्स ब्यूटिफुल। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं पंकज उदास की आवाज में। बहुत खूबसूरत ये गजल।

तमन्ना ओ जरा सुनना जाने तमन्ना, इतना तो सोचिए मौसम सुहाना क्या कहेगा।

0: कहेगा,
1: जमाना क्या कहेगा,
0: दीवाना क्या कहेगा।
2: Hi, this is Amitabh Bachchan.
3: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi, this is Salman Khan.
6: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
9: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से।
10: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
11: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
12: दोस्तों 3 मिनट हो गए हैं, 8:01 का सफर बाकी है। हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं, स्वागत कर लेते हैं आपका। दोस्तों ब्रिस्बेन में 17 डिग्रीज है अभी, और चलिए देखते हैं ट्रैफिक में। हस्टन में यहां पर मल्टी व्हीकल क्रैश हुआ है और इन्फॉर्मेशन अभी हमारे हाथ नहीं है। और चलिए दोस्तों स्वागत करते हैं आपका, हमारे साथ जुड़ गए हैं, एंजॉय करते हैं ये गीत।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है।
3: मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
2: अच्छा, वो क्या?
3: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
2: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
3: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
4: वेलकम बैक दोस्तों, और 11-12 मिनट हो गए हैं 8 बजकर, और सुबह का सफर में आगे बढ़ते हैं। हमारे पास बहुत ही खूबसूरत सा गीत है, लेकिन उससे पहले एक टिप देते हैं। अगर आपको एंजाइटी होती है या फिर पैनिक अटैक्स होते हैं, डिप्रेशन होता है या डिप्रेशन से आप सफा कर रहे हैं, वैसे कभी किसी लो मूड को आप ऐसे ही नहीं कह दे कि मुझे डिप्रेशन है या यू नो थिंग्स लाइक दैट। इट हैज़ टू बी प्रॉपरली डायग्नोज्ड, आपका डॉक्टर ये डायग्नोज करता तो ही। हमेशा ऐसा होता है कि हम गूगल पे, इंटरनेट पे खोजते रहते हैं कि ये सिम्टम हो गया है मुझे, चलो देख लेते हैं क्या होगा, यू नो। तो एंड देन वी डायग्नोज आवरसेल्व्स एंड देन वी से मुझे ये है। तो यू नो ऐसा करते हैं लोग, आई मीन यू नो, सो ऐसा बात नहीं है कि ऐसे ही कह रहे हैं हम। पीपल हैव डन दिस, पीपल आर डूइंग दिस, और फिर सेल्फ मेडिकेट करते हैं। एंड ओब्वियसली अगर प्रेस्क्रिप्शन मेडिकेशंस है तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ लेते रहते हैं, अपनी दवाई अपनी खुद से करते हैं। तो आप यू नो अगर कोई भी टेंशन होता है तो आप ज़रूर जाएं, अपने डॉक्टर से बात करें, बिकॉज दे आर द बेस्ट पर्सन टू टेल यू व्हाट इज़ हैपनिंग। और अपने लो मूड को डिप्रेशन ना कहें। और कभी कभी ऐसा होता है आप एंजाइटी सफ़ा करते हैं, सभी लोग का ऐसा होता है, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा एंजाइटी उनको हो जाती है। एंड जहाँ पर आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लगता है या स्लाइट पेन होने लगता है चेस्ट में, ऐसा होता है। तो अगर ऐसा कुछ है दोस्तों, तो ओब्वियसली अगर आप मेडिकेशन पे है तो ज़रूर अपना मेडिकेशन ले। लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि अपने जहाँ पर आप रहते हैं उसको मेंटेन करना, उसको क्लीन रखना, उसको साफ सुथरा रखना इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एज वेल फॉर योर माइंड सेट। आपका माइंड क्लियर रखना और क्लस्टर्ड, और हमेशा जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है, अगर आपके एनवायरनमेंट में अगर ऐसे ही पड़ा रहता है तो ये बहुत फॉगी कर देता है, माइंड को क्लियर नहीं रखता है। तो एंड देन उस पर ज़्यादा टेंशन रहती है। तो ये तो बहुत ग्रेट डेप्थ में हम जा रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे ही अगर यू नो यू सफरिंग फ्रॉम ऑल दिस लिटिल सिम्टम्स, तो नेचुरली अगर आप कहते हैं कि घर के अंदर आप देर आर सम प्लांट्स जो जिनकी महक है, उनकी जो पत्ते हैं, उनमें से जो भी निकलता है वो आपके माइंड को काम करता है। उसमें से एक है जैस्मीन। जैस्मीन को आप अपने कमरे में रखने से क्या होता है कि आपको जो एंजाइटी है, पैनिक अटैक्स है, इसको नेचुरली आपको रिड्यूस करता है। अभी आप सोच रहे हो कि मुझे एकदम मैसिव वाला एंजाइटी अटैक आ गया है, यू नो, एंड आप मैसिवली यू नो डिप्रेशन से सफ़ा कर रहे हैं, तो आप नहीं कहोगे कि अच्छा जैस्मिन पेड़ आप पर लाए. तो कोई भी चीज अगर आप रखते हो उसमें बिलीफ रखना चाहिए तो कि यू नो दैट इज गोना हेल्प यू. सो अगर आप कोई मेडिकेशन भी लेते हो तो ऑब्वियसली इट वर्क्स, बट देन बिलीविंग दैट इज गोना वर्क इज गोना मेक इट डबल टाइम वर्किंग फॉर यू. तो ये कहीं मैंने पढ़ा था कि अगर आप किसी चीज को यू नो अगर आप काला धागा भी बांधते हो अपने हाथ में या फिर रेड धागा किसी चीज के कारण तो आप बांधते हैं राइट, एंड यू बिलीव इन दैट कि अभी आपके कोई आपके घर पर पूजा हुआ है या कुछ, तो आपको जो धागा बांधते हैं जो पंडित लोग मंत्र पढ़ते हैं एंड यू बिलीव इन दैट कि ये रक्षा धागा है एंड इस को ना प्रोटेक्ट मी, एंड या कोई ताबीज भी आप अपने गले में रखते हो, डू यू बिलीव इन दैट. ऐसे ही नहीं, खाली भी हो लेकिन आपका बिलीफ है तो वो करेगा बिकॉज आपके माइंड के ऊपर है. सो एवरी टाइम अगर अभी हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लेकिन द थिंग इज कि अगर आप कोई चीज़ घर में लाए हैं कोई बिलीफ के साथ, then believing in that and trusting in that is very very important. Aapka mind bhi isme juda hota hai aur hona bhi chahiye taki aap acha feel kare iske bare mein. So koi fayda nahi hai agar aap sochte hain acha chalo jasmine plant laga dhar lete hain shayad you know mera ye ho jayega. Nahi, it's not gonna work, it's not gonna work till you believe. To I know it's a bit कॉम्प्लेक्स, लेकिन आई एम श्योर यू गेट दैट. चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं ये खूबसूरत सा गीत मुकेश की आवाज में.
5: ये जुमन किसी मरे

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
2: वेलकम बैक दोस्तों, और प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप शायद जानते होंगे जो लोटस सीड्स है मखाना, और ये बहुत ही हेल्थी फूड है जो एज अ स्नैक आप ले सकते हो, और यू नो काम पर जाते हैं तो आप इसको बनाकर यू नो टोस्ट कर सकते हैं, ड्राई टोस्ट कर सकते हैं, या अगर आप थोड़ा सा घी डालना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। बहुत लोग घी से बहुत डरते हैं, यू नो, एंड देयर हेल्थी फैट्स, सो मॉडरेशन में, या फिर यू नो यू नीड टू कंज्यूम इट एवरी डे बिकॉज ये नीडेड है आपके लिए। तो एकदम से आप अगर घी नहीं खाते हैं तो ये आप पर है, लेकिन आई बिलीव कि आपको छोटे बहुत कम अमाउंट्स में एटलीस्ट खाना चाहिए। अगर अभी तो हम मखाना की बात कर रहे हैं, लेकिन मखाना जैसे लोटस सीड्स या फॉक्स नट्स भी कह सकते हैं, आपको इंडियन शॉप में मिलते हैं। आई हैवंट सीन इसको, हमने कोल्स या वूलीज में ऐसे नहीं देखा है, शायद हेल्थ फूड्स में होगा। तो ये क्या करता है, ये एक सुपर फूड माना गया है इसको, एंड इट्स पैक्ड विद प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और मैनेजेस ब्लड शुगर, इम्प्रूव्स डाइजेशन। इसको आप खीर भी बना सकते हो। तो ऑल इन ऑल इस ऑल राउंडर, और अगर आप यू नो हेल्थी स्नैक करना चाहते हो, थोड़े से टोस्ट कर लें और इसमें आप छोटे छोटे यू नो अगर थोड़ा चटपटा बनाना चाहते हैं तो धनिया, टमाटर, खीरा छोटी छोटी यू नो काट लें और टोस्टेड मखाना में अच्छे से मिलाएं, एंड ऑब्वियसली नमक एंड चिली एंड एवरीथिंग, एंड देन इट विल बी रियली डिलिशियस स्नैक। आप इसको ले सकते हैं, एंड बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, लो इन सोडियम है, गुड लेवल्स पोटेशियम है इसमें। सो नेक्स्ट टाइम अगर आप इंडियन शॉप जा रहे हैं तो ज़रूर बाय कीजिएगा, एंड इजी रादर देन बाइंग द चिप्स एंड स्टफ जो आप खरीदते हैं, जो हम खरीदते हैं। लेट्स नॉट अपने आप को ऐसा नहीं करें कि हम इंक्लूडेड नहीं हैं, इसमें हम भी इंक्लूडेड हैं, वी आर ऑल इन इट टुगेदर। लेकिन अपना लाइफस्टाइल जो चेंज करना है उसकी कोशिश हमेशा जारी रहती है दोस्तों, क्या करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंजॉय करते हैं फिल्म निश्चय से, खूबसूरत संगीत।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव की सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।
3: वेलकम बैक दोस्तों, याद दिला दे कि 9 पर जुमा प्रोग्राम है, आधे घंटे का सफर बाकी है, हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत कर लेते हैं आपका। वैसे कहते हैं लाइफ का सबसे बड़ा कमबैक फिर से खुद को खुश किया जाए। और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। We'll be trying every day to work on ourselves, to make ourselves happy। ये आपके हाथ में है, खुद को खुश कैसे रखा जाए।
4: तुम तीनों के साथ मुझे अपना बचपन फिर से जीना, किसी भी तरह एक बार एवरेस्ट तक जाना।

दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत आप सुन रहे थे और आगे बढ़ते हैं। एक क्या कह सकते हैं, है मास्क है हमारे पास सर। इसका जो रेसिपी है वो आप यू नो नोट डाउन कर सकते हैं या याद रख सकते हैं। सो ये बेसिकली योगर्ट है, कप ऑफ योगर्ट, और इसमें मिलाते हैं 2 टेबल स्पून ऑफ कॉफी और कॉफी पाउडर। इसको अच्छी तरह से मिलाते हैं एंड अपने स्कैल्प में इसको आपके बालों में ऑयल नहीं होना चाहिए, तो आप अपने स्कैल्प में इसको अच्छी तरह से लगाएं और अबाउट 40 मिनट्स तक इसे रहने दें एंड देन यू कैन वॉश इट। तो क्या है कि जो कॉफ़ी और योगर्ट का जो मिक्सचर है ये न्यूट्रंट रिच मास्क है जो स्टिमुलेट करता है ग्रोथ, एक्सफोलिएट्स द स्कैल्प एंड इम्प्रूव्स टेक्सचर। तो कॉफ़ी एक्स करता है स्टिमुलेंट फॉर हेयर फॉलिकल्स, और जो योगर्ट है ये कंडीशन करता है, इसमें प्रोबायोटिक्स है, डेंड्रफ और फ्रीज रिड्यूस करता है। सो घर पर ही आप अच्छे वाला जो यू नो मास्क है, हेयर मास्क है, ये बना सकते हैं। चलिए दोस्तों एंजॉय करते हैं।

तो सर, सुबह का सफर में आगे बढ़ते हैं। बस कुछ ही समय हमारे और आपके साथ का बचा है, और जो कि आज फ्राइडे है एंड यू नो वीक का, सप्ताह का एंड है और वीकेंड आने को है, तो घर पर शायद आप आज है वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, या फिर आज वर्क पर गए हैं, या फिर घर पर ही रहते हैं, या फिर यू नो शायद सिक लीव ली हुई है आपने, जो भी कर रहे हैं, लेकिन यू नो या छुट्टी है आपका, तो जो भी कर रहे हैं आप आज क्या प्लान बनाया है आपने, यू नो सो शायद बाहर जाएंगे। वेदर पता नहीं कैसा है, अभी अभी तो भीतर है हम यहाँ पर, लेकिन लेट द वेदर नॉट फेज यू टुडे। जो भी करना है वो आप करें, कॉफी में जाना है दोस्तों के साथ जाइएगा, मूवी पे जाना है जाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, घर को साफ करना है वो भी कीजिएगा। समटाइम्स ऐसे होता है कि वी थिंक कि अच्छा चलो वेदर विल डिटर्मिन कि आज हम घर मॉप करेंगे या नहीं, यू नो क्योंकि एकदम से सभी कुछ ऐसा फील होता है कि सब वेट हो गया है बाहर भी भीतर भी, एंड देन यू फील कि ओ देर इज नो कम्फर्ट प्लेस, तो यू हैव टू डू सम थिंग्स, यू डोंट हैव टू डू सम थिंग्स। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा करना है या नहीं करना है, वॉशिंग करना है नहीं करना है, और फिर ओब्वियसली लॉन्ड्रोमैट्स तो है जहाँ पर आप जाकर बिग क्लोथिंग है वो वहाँ ड्राई कर सकते हैं थोड़ी ही टाइम में, एंड तो अगर आप यूज करते हैं लॉन्ड्रोमैट जहाँ पर आप यू नो रेनी सीजन में शायद टॉवल्स धोते हैं या फिर बेडशीट्स धोते हैं, तो घर पर ही अगर वॉश कर ले, खाली वहां पर जाकर ड्राई करना है। सो नो आई डिड दिस वंस एंड आई वाज सो सिली दैट डे, काफी सालों की बात है, एंड वहां पर जाकर वॉशिंग किया मैंने एंड फिर वहीं पर ड्राई किया, एंड जब घर पर जब हम आ गए ना, आई वाज थिंकिंग व्हाई डिड आई डू दैट, यू नो आई वाज सो सिली।

लेकिन कभी कभी ऐसा होता है लाइफ में कि कुछ चीजें हमें पता नहीं होता है, करने के बाद तब जान जाता है कि ओह या आई कुड हैव सेव्ड सम मनी, क्योंकि वहां पर वॉशिंग का अलग पैसा है, फिर ड्राई का अलग पैसा है ऑब्वियसली. एंड या सो एनी वे, घर पर आप रहने वाले हैं, शायद कुछ अच्छा बनाएंगे आज खाने को. एंड या फिर अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, नाइस ब्रेकफास्ट बनाया है आपने, जो भी कर रहे हैं दोस्तों, मेक श्योर यू हैविंग अ गुड टाइम, यू एंजॉइंग योरसेल्फ, एंजॉइंग एवरी मोमेंट, लिविंग दिस मोमेंट माइंडफुली. और चलिए एंजॉय करते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत, हैप्पी भाग जाएगी सेलिया.

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a...
2: वेलकम बैक दोस्तों, और चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि कल जो चाहिए था आज वो नहीं चाहिए, बस यही समय की ताकत है। दोस्तों समय बड़ा बलवान, और ये तो हमें हमेशा सीखना चाहिए कि ऑलवेज रिस्पेक्ट टाइम, टाइम पर रहना है, टाइम पर जाना है, टाइम पर करना है। हमेशा ये सोचते रहते हैं कि एंड इट्स सो अमेजिंग, क्योंकि कोई चीज़ जो हम एक महीने पहले हमें एकदम से चाहिए था, अब नहीं, क्योंकि वी हैव ग्रोन ड्यूरिंग दैट टाइम। टाइम हैज चेंज्ड, पर्सपेक्टिव हैज चेंज्ड, व्यूज हैव चेंज्ड, हमारे लाइक्स भी चेंज हो गए हैं। जो टाइम है वो हमें टीच करता है, राइट? इट्स द बेस्टेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। चलिए दोस्तों,

दोस्तों बहुत ही खूबसूरत संगीत आप सुन रहे थे और अब तो जाने का वक्त हो गया है. और दोस्तों बहुत मजा आया, हैड फन टुडे एंड आशा है कि आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा गुजरा है. लवली डे, ब्यूटिफुल वीकेंड. मिलते हैं अगले हफ्ते. टिल देन नमस्कार.

यह रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701, 3279-1701।

और इन यादों को ताजा करने के लिए मैं आपका साथ देता हूं हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक स्टेशन रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर। आपके साथी फिरोज खान संगीत की जानकार हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक 79 ब्रिस्बेन पर।

0: दिलों को झंकृत करे,
1: हवाओं में फिजाओं में दिलकश संगीत से रंग बिखेरे,
2: और अभी से लेकर 10 बजे तक रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर आपके साथ फिरोज खान। आज का दिन शुक्रवार का दिन आप सबके लिए शुभ हो, और आज जुमा है और आप सब सुनने वालों को जुमा मुबारक। आप सबको हमारा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहु। और शुरुआत कर रहे हैं हमारा रेगुलर सेगमेंट आज जुमा है।
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم
4: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

0: वो जिंदा जावेद हस्ती जो तमाम कायनात को संभाले हुए है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं है। वो ना सोता है और ना उसे ऊंग लगती है। जमीन और आसमानों में जो कुछ है उसी का है। कौन है जो उसकी जनाब में उसकी इजाजत के बगैर सिफारिश कर सके? जो कुछ बंदों के सामने है उसे भी वो जानता है, और जो कुछ उनसे ओझल है उससे भी वो वाकिफ है, और उसकी मालूमात में से कोई चीज उनकी गिरफ्त इदराक में नहीं आ सकती इल्ला ये कि किसी चीज का इल्म वो खुद ही उनको देना चाहे। उसकी हुकूमत आसमानों और जमीन पर छाई हुई है, और उनकी निगेबानी उसके लिए कोई थका देने वाला काम नहीं है, बस वही एक बुजुर्ग को बरतर
1: और रेडियो सब इंडिया ब्रिस्बेन पर मैं हूं आपके साथी फिरोज खान। हर जुमे के दिन 9 से लेकर 9:30 बजे तक आप सुनते हैं मरहूम हजरत मौलाना बसीर अहमद दीवान के साथ आज जुमा है प्रोग्राम, जिसको हम पेश करते हैं हर शुक्रवार को जुमे के दिन 9 से लेकर 9:30 बजे। और हम आपको याद दिला दें कि हर रविवार को 7 से लेकर 8 बजे तक आप सुनते हैं एक और इस्लामिक प्रोग्राम, जिसमें हम पेश करते हैं हजरत मौलाना फजलदाद के साथ सवाल और जवाब, हर रविवार को 7 से लेकर 8 बजे तक। फिलहाल हर शुक्रवार की तरह हर जुमे के दिन जुमे प्रोग्राम के बाद आपके लिए हम पेश करते हैं चुने हुए रिलीजियस विंटेज कवाले हमारे प्लेलिस्ट से निकाली हुई। यह है रेडियो 1701 और मैं हूं आपका साथी फिरोज खान।

और इन यादों को ताजा करने के लिए मैं आपका साथ देता हूँ हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक स्टेशन रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर। आपके साथी फिरोज खान संगीत की जानकार हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक 79 ब्रिस्बेन पर।